सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 पे का हर्ष पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
3: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी न टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी न जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
0: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी शिक्षा का महत्व विषय के संबंध में विचार। वाचक स्वर था मंजुला नेगी का। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना की बात आई, ज्ञान बल बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के विदाता भगवान गणपति का सुमिरन करते हैं और सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

रिमन, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में परमात्मा है और परमात्मा का घट घट में वास है। इस जगत के आकाश में, अग्नि में, वायु में, जल में।

सभी में सभी में। इस प्रकार से जगत की आत्मा परमात्मा है और परमात्मा से निकटता के लिए प्रभु भक्ति आवश्यक है, क्योंकि इस भक्ति में अपार आनंद है।

आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं संध्या मुखर्जी का गाया ये भजन।

माँ गंगा की महिमा अपरंपार है, जिसका कल कल बहता जल जीवन को खुशियों से भर देता है, कष्टों को दूर करता है, पापों को बनाता है और मोक्ष प्रदान करता है। ऐसी माँ गंगे को हम बारंबार नमन करते हैं और सुनते हैं ये गंगा गीत।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूं? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूं जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थी अनूप जलोटा। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

રાત્રિ 9:15 પર સ્પોટ લાઇટ, રાત્રિ 10 બજે રવિવાર શ્રી અખિલ ભારતીય સંગીત સભા, યે દોનો કાર્યક્રમ દિલ્હી કેન્દ્ર સે રિલે કિયે જાયેંગે। सुबह 8:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। सरकार के 12 साल, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:10 पर। कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत श्रीमती नवनिधि गुप्ता से काव्य पाठ आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बाल मंडल कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर नितेश गुप्ता से किरण जोशी की बातचीत। साथ ही बच्चे सुन पाएंगे बच्चों के मुख से रचनाएं और बाल गीत। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर होगा, जिसमें आज का आकर्षण रहेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे श्रोताओं के अनुरोध मां। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा आशीष कुकरेती का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गढ़वाली लोकगीत, कलाकार होंगे आयुष जोशी। लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर आप सुन सकते हैं सामुदायिक गान। भूले बिसरे गीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:10 पर। सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे सुबह 10:12 पर, दिन में 11

0: ग्यारह बजे 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:25 पर शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर, रात को ही 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 6:55 होने को अब समाचार होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते।

0: तेन उक्तं यत् अस्य सन्देहे लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश की फिल्म का नाम था आह। गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जय किशन का था।
1: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। हम आपको याद दिला दें, सुबह 8:30 पर सुनिएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश। देहरादून के बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु, 4 गंभीर रूप से घायल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। और हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।

0: अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति जिला और राज्य सहकारी बैंकों की वेतन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कर 1 माह में रिपोर्ट देगी। देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सुधारों के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति उन राज्यों के सहकारी बैंकिंग मॉडलों का भी अध्ययन करेगी जहां इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस बैठक में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने एनपीएस कम करने और बकाया ऋणों की प्रभावी वसूली के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए एनपीए पर नियंत्रण जरूरी है। बैठक में उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की निरंजनपुर स्थित भूमि के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सहकारिता मंत्री ने प्रस्तावित 3 नए जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी बैंक भवनों और समितियों में चरणबद्ध तरीके से सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया। डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही सहकारी बैंकों को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक व्यावसायिक रोडमैप तैयार करने पर भी बल दिया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कैकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियों के लिए की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रबंधों, आवागमन तथा ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और देश विदेश से आने वाले प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जल क्रीड़ा गतिविधियों का अनुभव भी लिया और कहा कि राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियां वाटर स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में कल रात खेतों में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। देहरादून के पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि खेतों में पानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था जो बाद में मारपीट में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।
2: वाला गांव है, थाना शहरपुर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो इसमें जो है दो पक्षों के बीच में जो है खेत में पानी को लेकर जो है विवाद हुआ था जिसमें उनकी आपस में हाथापाई हुई थी। तो इस संबंध में जो है सूचना पुलिस को मिली, जो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो है अभी परिवार वालों से जो है इसमें तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस जो है अलग अलग टीमें पुलिस की बना दी गई है और जो पुलिस जो है जो अक्यूज जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया गया था, जिनका आपस में लड़ाई हुई थी, उनकी तलाश कर रही है। जल्दी जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
3: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि खेत किसानों की आत्मा है और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य जोखिमों से बचाने के लिए वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के मेदनपुर गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित कृषक गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पहले चरण में 16,000 पॉली हाउस लगाए जाएंगे। इसके अलावा मिलेट्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री जोशी ने महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे मिलेट्स और चौलाई के लड्डुओं का अवलोकन भी किया तथा कृषि विभाग द्वारा स्थापित फूलों की खेती, जियो टैंक, पॉली हाउस का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से जैविक जनपद है और यदि जिले में कोई व्यक्ति रासायनिक उर्वरकों की बिक्री करता पाया जाता है तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आपदा मित्रों और ग्रामीण स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन, खोज व बचाव, बाढ़ प्रबंधन, जल जनित आपदाओं से निपटने और वाटर रेस्क्यू की सैद्धांतिक व व्यवहार जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों की क्षमता का विकास करना है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वो प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर सकें। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक और सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत गठित चयन समिति की 4 जून 2026 को बैठक में ये निर्णय लिया गया। खोजबीन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराएगी। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आलोक वर्मा होंगे। समिति में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे,

सुभाष कुमार और राधा रतूड़ी को सदस्य बनाया गया है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को भी समिति का सदस्य नामित किया गया है। समिति उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश। देहरादून के बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु, 4 गंभीर रूप से घायल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। और हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:31 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए आयुष जोशी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर महेश आनंद, तबला पर अमित कुमार, हुड़का पर प्रवीण कुमार, बांसुरी पर सौरभ कुमार और हारमोनियम पर अनुज। तो आइए सुनते हैं आयुष जोशी के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: शैल संगीत के अंतर्गत आप इस समय सुन रहे हैं आयुष जोशी की गायी गढ़वाली लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।

0: आयुष जोशी के गाये से गढ़भरी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर महेश आनंद, तबले पर अमित कुमार, हुड़का पर प्रवीण कुमार, बांसुरी पर सौरभ कुमार और हारमोनियम पर अनुज। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: पैसे दो हस्बैंड

0: जी
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

105 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं, हमारे ग्रंथों में दान को पुण्य कार्य माना गया है। चाहे कर्ण का कवच और कुंडल का दान हो, बयाशी दधीचे का हड्डियों का दान हो, या फिर राजा हरिश्चंद्र का राज्य दान, और ये दान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जाता है। और ऐसे में दान दाता या दान लेने वाले दोनों ही खुशी महसूस करते हैं। लेकिन श्रोताओं, जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे दुर्घटना में वृद्धि हुई है, या फिर अत्यधिक रक्त स्राव या गंभीर बीमारी के कारण जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसे में जब खून नहीं मिलता, तो ऐसे में मरीज की जान भी चली जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 14 जून को, यानी कि आज ही के दिन को, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व रक्तदान दिवस भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन के लिए रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना। जय शुद्धों, सब कुछ मिल सकता है, पर शुद्ध रक्त नहीं। रक्त या रक्त का प्लाज्मा किसी फैक्ट्री या कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, ये केवल मानव शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रक्त की पूर्ति रक्त से ही संभव है, और जो केवल मानव शरीर से ही संभव है। इसलिए किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। श्रोताओं, रक्तदान को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, पर इन अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि रक्तदान के बारे में बेहतर जानकारी अपने विशेषज्ञ या डॉक्टर से प्राप्त करें। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर आप भी रक्तदान करके किसी की जान बचा सकते हैं और उनकी खुशियों को लौटा सकते हैं। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ श्रोताओं, आइए अब आज के ताज़ा समाचार जानते हैं अखबारों की सुर्खियों में। सैन्य भर्ती में नारी शक्ति प्रगतिशील भारत का प्रतीक राष्ट्रपति। सैन्य प्रशिक्षण के साथ बन रही वैश्विक साझेदारी की नींव, मित्र देशों के कैडेटों की मौजूदगी से मजबूत हो रहा रक्षा सहयोग। राष्ट्रपति बोली, आईएमए में दिख रही वैश्विक भरोसे की तस्वीर। असम में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, देहरादून निवासी स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह समेत 5 जवान शहीद। उत्तराखंड बनेगा साहसी खेल और पर्यटन का प्रमुख केंद्र धामी। नए कलेवर में निखरेंगे सहकारी बैंक, अन्य राज्यों के बैंकिंग मॉडल से मिलेगा संबल। मॉनसून से पहले प्रशासन अलर्ट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। सूखती झीलों को करेंगे पुनर्जीवन, मिलेंगे अध्ययन कराएगी सारा। बाढ़ चौकियों से ग्राम प्रधानों को मोबाइल पर मिलेगा चेतावनी का अलर्ट। जागरूकता को घर घर दस्तक दे रहा निर्वाचन आयोग का अभियान। सप्ताहांत पर देहरादून में जाम का छाम, प्रमुख मार्गों पर दिनभर रेंगते रहे वाहन। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को राज्य के पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा या गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। श्रोताओं, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों से और जानते हैं कि आज 14 जून क्यों है खास इतिहास के पन्नों में। वर्ष 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। सन 1949 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला था पहला बंदर अल्बर्ट द्वितीय। 1996 में भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन का जन्म हुआ था। 1999 में थाम्बी मैबे के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2004 में पंचशील सिद्धांत की 85 वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था। वर्ष 2007 में चीन के गोबी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। वर्ष 2011 में रुद्र वीणा वादक असद अली खान का निधन हुआ था। वर्ष 2008 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन सोने की खान का पता चला था। श्रोताओं, ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी और आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, फिल्मों का एक दौर ऐसा भी आया जब ऐतिहासिक कहानियों पर फिल्में बनाई गई और फिल्मों के पर्दों पर ये ऐसी आई जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। वे फिल्में आज भी दर्शकों को याद हैं। उन फिल्मों में से एक है मुगल-ए-आज़म, जो अपने भव्य दृश्य, अद्भुत अभिनय, मशहूर पटकथा, लोकप्रिय गानों के लिए आज भी जानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, फिल्म मुगल-ए-आज़म की फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे के आसिफ, जिनका पूरा नाम आसिफ करीम है। इनका जन्म आज ही के दिन 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में डॉक्टर फजल करीम और गुलाम फातिमा के घर हुआ था। बचपन से ही इनकी कला की प्रति रुचि थी और ये मुंबई चले आए, जिन्हें इन्होंने खूब संघर्ष किया मुंबई में। श्रोतों, 1945 में इन्होंने पहली फिल्म बनाई फूल, जो सफल रही। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में बनाई पर वो चली नहीं, लेकिन इसके बाद ये फिल्म मुगल-ए-आज़म के लिए लग गए, जिसके निर्माण के लिए ये कई वर्षों तक लगे रहे और 12 वर्ष के प्रयास के बाद श्रोतों मुगल-ए-आज़म रिलीज हुई, जो दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे अनेक नायक नायिकाओं को लेकर बनाई गई थी और ये उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। श्रोताओं, देश में सिनेमा घर खचाखच भरने लगे और लंबी लंबी कतारें लगने लगी। श्रोताओं, इस फिल्म की सफलता के बाद के आसिफ ने लव एंड गोल्ड जैसी फिल्म को बनाने की योजना बनाई, जो पूरी तरह से रंगीन बनने वाली उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी, पर इनके निधन से ये फिल्म बीच में ही रुक गई और जिसे बाद में रिलीज किया गया। श्रोताओं, के आसिफ ने 9 मार्च 1971 को दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनकी लोकप्रिय फिल्में आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी इस यादगार फिल्म मुगल-ए-आज़म को याद करते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, मौसम पल पल बदलते हैं जी, यहाँ पता ही नहीं चलता कब कौन सा मौसम है। लेकिन गर्मियों का मौसम चल रहा है ये सब हम जानते हैं, लेकिन ऐसे में जब बरसात होती है तो बड़ा ही सुकून मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है। पर श्रोताओं, राहत के साथ आफत तब बन जाती है जब हम बीमार हो जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में अचानक से बरसात होना कई कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। और ऐसे में जब देखते हैं कि हमारे घर के आसपास या चारों ओर पानी भर जाता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, या फिर इधर उधर फैले गंदगी कूड़े के ढेर में मच्छर पैदा होने लगते हैं। श्रोताओं, इस तरह से उनमें बीमारियाँ पनपने का भय बना रहता है। तो ऐसे में बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, लेकिन श्रोताओं हमें ये भी ध्यान रखना है कि डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को पूरा ढककर रखें, यानी कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, बासी भोजन ना खाएं, मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें, और किसी प्रकार की अगर बीमारी या किसी प्रकार के लक्षण दिखाई भी दे देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार से हम छोटी छोटी सावधानी बरत कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं खूबसूरत सा ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सुनते रहें आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार, देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार आपके, गीत हमारे।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में थीम रहेगी, गीत भी रहेंगे, लेकिन थीम जरा कुछ हटके होगी। जी हाँ श्रोताओं, थीम से संबंधित अपने विचार भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7088000731। जी हाँ, एक बार पुनः नोट कर लीजिए 7088000731। श्रोताओं, जून माह में गर्मियों की छुट्टियां, एक प्यारा सा घर, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाव, बर्फ की गोले, गली मोहल्लों में हंसी ठिठोली, नाना नानी की कहानी, मामा मौसी का प्यार और दुलार। जी हाँ, याद आया ना नानी का घर। जी हाँ श्रोताओं, जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती है, मम्मी के साथ बच्चे चल देते हैं नानी के घर, जो हर किसी को बहुत पसंद आता है। जी हाँ, लेकिन समय के साथ जैसे सब कुछ बदला है, आजकल चाहे नाना नानी के घर कितना जाते हैं बच्चे, बोलो, आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतना सारा वर्कलोड कि उन्हें फुर्सत नहीं कि अब देखे ना एक्स्ट्रा क्लासेज, समर कैंप या अदर एक्टिविटीज के कारण बच्चे इधर उधर कहीं जा नहीं पाते और दिन भर इस गर्मी के मौसम में मोबाइल के साथ कैद रहते हैं अपने घरों में। जी हाँ, न किसी से कोई बात, न वार्तालाप, कोई खेल कूद या कोई सैर सपाटा नहीं। लेकिन श्रोताओं, बच्चों की आदतें हम देख रहे हैं कुछ बदल रही है, और ऐसे में ऐसा लगता है उन पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है, उन पर ज़्यादा ही दबाव है, और ऐसे में बचपन गुम हो गया है तो वो नाना नानी को भी लगता है कि ज़्यादातर मोबाइल पर ही जाने लगे हैं। तो श्रोताओं, क्यों न पुरानी यादों को ताज़ा करें आज ननिहाल के घर को। जी हाँ, कैसा लगता है आपको ननिहाल का घर, कितनी खुशी मिलती है ननिहाल के घर से, और अगर उनकी यादों को लेकर कुछ ऐसी ताज़ा आपके पास जानकारी है तो लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। जी हाँ, आज के प्रोग्राम की थीम ननिहाल का घर। जी हाँ श्रोता, आपने नोट नहीं किया है आज की थीम तो नोट कर ली, ननिहाल का घर। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर लिख भेजे अपने विचार।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे, और प्रोग्राम में आज की थीम है ननिहाल का घर। जी हाँ श्रोता, हम लिख भेजे अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7080000731। हमारे श्रोताओं के लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज है, हमारे श्रोता लिखते हैं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली और साथ में इनके खूब चंद वर्मा लिखते हैं, आज की थीम अच्छी है, पहले बच्चे नाना नानी के घर जाकर गर्मी की छुट्टियाँ बिताने में बहुत खुश रहते थे, लेकिन आज मोबाइल आ जाने से बच्चे ननिहाल को भूल गए। पहले हम लोग ननिहाल सबसे पहले सोचते थे कि तालाब, आम, बेल खाने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब के बच्चे नाना नानी के घर को भूल कर मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं, जो उचित नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लिखा है, धन्यवाद बलकरण वर्मा जी और आपके परिवारजन। और निश्चित ही बिल्कुल आपने सही लिखा है कि जो मोबाइल में बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं वो उचित नहीं है, जो मौज मस्ती सैर सपाटे में है और ननिहाल के घर में वो कहीं नहीं मिलती। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हंसमुख लाल और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि आज की थीम रखी है आपने नानी का घर। और लिखते हैं कि जब छोटे होते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, स्कूल जाते थे, हम नानी के घर भी जाया करते थे और उस टाइम खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। हमारे मामा मामी और हमारे रिश्तेदार बहुत ही प्यार करते थे। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, किसी को फुर्सत नहीं किसी से बात करने की, और गर्मियों के दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही लिखा है, निश्चित ये श्रोता हम याद करते हैं पुराने दिनों को जब सब लोग नाना नानी के घर जाया करते थे। लेकिन श्रोता वक्त बदला है, बहुत कुछ बदला है, अभी जाते हैं नाना नानी के घर, तो आप भी अपने शेयर कीजिए ना विचार व्हाट्सएप नंबर

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू, आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाए। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
3: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं जनपद बरेली के कस्बा मीरगंज बिजलीगढ़ से आदर्श दिवाकर, उपेंद्रपुरी गोस्वामी, कल्लू भाई मिस्त्री और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। आप सभी लिखते हैं कि नानी का घर केवल मकान नहीं बल्कि प्यार दुलार, अपनापन और बचपन की खूबसूरत यादों का खजाना होता है। वहाँ हर कोना स्नेह और खुशियों से भरा होता है। क्या बात है जी, बिल्कुल ऐसी खुशियाँ कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ नानी के घर ही मिलती है। धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं जिन्होंने मैसेज लिखा है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। जी हाँ, हर बार की तरह अपने विस्तार से इनका लंबा मैसेज होता है और लिखते हैं कि ननिहाल का घर, और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज आपने बेहतरीन विषय चुना है और बचपन की यादों में, बचपन की गलियारों में हमें ले गए। आज भी हमें ननिहाल का घर याद है। जब बचपन में छोटे थे, स्कूलों से जैसे गर्मी की छुट्टियां होती, हम मम्मी के साथ निहाल जाने को आते रहते थे और ननिहाल चले जाते थे, और वहाँ नाना नानी का प्यार हम पर खूब बरसता था। नाना नानी हमें खूब प्यार करते थे, दूध दही आइसक्रीम और हर तरह से हमारी ज़िद ननिहाल में पूरी होती थी। अब आज समय जैसे जैसे बदला है, ननिहाल से बच्चों की बहुत दूरियां हो गई हैं। जैसे कि आपने बताया, एक्स्ट्रा क्लासेस, समर कैंप और हर तरह की प्रतियोगिता में अपना टैलेंट हासिल करने के लिए बच्चे ननिहाल को भूलकर अपनी शिक्षा में खो गए हैं। और वहीं मोबाइल ने बच्चों के बचपन से दूर किया है। हर समय मोबाइल में गुम रहना, आज का डिजिटल युग में मोबाइल पर तरह तरह की जो सामग्री पेश की जाती है, बच्चे इसके अलावा दूसरों को कहीं समय नहीं दे पाते। बचपन और नाना नानी का घर, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बढ़ते पारिवारिक बोझ और शैक्षणिक प्रेशर भी बच्चों पर बहुत हावी हुआ है। बच्चे ननिहाल से बहुत दूर हो गए हैं। हमें तो आज भी अपना बचपन याद है, और अब भी जब कभी ननिहाल जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है उसे कभी नहीं भूलते। आज जब हमारे नाना नानी नहीं हैं तो मामा मामी के साथ हम बातें करते हैं, बचपन की उन यादों को ताज़ा करते हैं, जिससे दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन तो हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है धर्मेंद्र छीपा जी, विस्तार से इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ये सोचता हूँ, हम नाना नानी के घर जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने के लिए ज़िंदगी में हर पल बना रहना चाहिए। और आपने जो विस्तार से हमें मैसेज लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से धर्मेंद्र छीपा जी।

0: भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं फेर दे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम बेचारा आपके गीत हमारे FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं निजामाबाद तेलंगाना से, आप हैं MA वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नुमान, साथ में इनके बहुत सारे मित्र। लिखते हैं कि स्कूल की छुट्टियों में हम ननिहाल के घर जाते हैं, हर साल जाते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आता है, वहाँ हर चीज़ में आज़ाद होते हैं और वहाँ अच्छी हमारी तवज्जो होती है और हमारे लिए बहुत अच्छा हमारा लाड प्यार होता है और बहुत अच्छा लगता है। हर वक्त हमारे हालात बदलते रहते हैं और इसी तरह आजकल ननिहाल को लेकर भी बहुत बदले हैं और ननिहाल में जो मोहब्बत और खुलूस मिलता है उसकी अपनी ही जगह है, वो कभी बदल नहीं सकती। बिल्कुल आपने सही लिखा है, जो प्यार मोहब्बत अपने ननिहाल में मिलता है वो शायद ऐसा कहीं और मिले। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज की थीम है ननिहाल का घर। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर लिख भेजे अपने विचार। जी हाँ श्रोताओं, आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइनस नक्सा, नाजी, आफिया इब्राहिम और सद्दाम। लिखते हैं कि जब हम बच्चे थे अपनी माँ के साथ नानी के घर जाते थे, नानी हमें गुड़ की मीठी रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, चने का साग बनाकर खिलाया करती थी और कहती थी, बच्चों हमेशा खुश रहो, कभी गुस्सा मत करना क्योंकि हमें नुकसान करता है, और सबके साथ प्यार से बोलो, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। कि नानी की बातें हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज वो सारी बातें हमारी समझ में आती है जब हमारे बच्चे भी जाते हैं नाना और नानी का घर। जी हाँ, नानी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा और ये हकीकत है कि जब नाना नानी के घर जाते थे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बातों बातों में सीख जाते थे और वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती थी। जी हाँ श्रोताओं, आप भी लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। आज की थीम ननिहाल का घर।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

समय 9:31 और 12 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे आज की थीम नानी हाल का घर। श्रोताओं, इस संदर्भ में ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं नारायण एस्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से। ललन मिश्रा जी लिखते हैं कि इस थीम ने हमें बचपन की याद दिला दी। हाय, वो भी क्या दिन थे जब हम नानी के गांव जाने के लिए गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते थे। नानी के यहाँ पहुँचते ही हम सभी भाई बहन उधम मचाना शुरू कर देते थे। पूरा दिन आम के बगीचों में बीतता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई रोकने वाला नहीं था। कभी अगर माँ डांटती थी तो उन्हें उनकी माँ यानी नानी जी कहती थी, अरे कुछ दिनों के लिए तो आया है, उधम मचाने दो, जब यहाँ से जाएगा तो अपना हुक्म चलाना। और इस तरह से पूरा दिन बीत जाता था। फिर रात को नानी के पास सोते, नानी हमें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती। लेकिन आज तो पूरा माहौल ही बदल चुका है। आज के बच्चे किसी के साथ समय बिताने से बेहतर मोबाइल के साथ आभासी दुनिया में रहना ही पसंद करते हैं। सच ही कहा गया है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सब कुछ बदल गया है, अब तो बस यादें ही बची है। जी बिल्कुल, ननिहाल की यादें तो हमेशा ताज़ा रहती हैं। और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और आप हमें मैसेज लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ललन मिश्रा जी, आपके सुंदर से विचार के लिए।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं मौला बारादरी महमूद खारामपुर से, भाई रफल साहिब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी लिखते हैं कि वाकई में बचपन हर गम से बेगाना होता है। जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो नानी के साथ हम भी नानी के घर जाया करते थे अपनी मम्मा के साथ। और लिखते हैं कि और वहाँ पर जब छोटे बच्चे होते हैं तो हर प्रकार के हम लोग शैतानियाँ किया करती थी और बहुत मज़ा आता था। नानी के घर नानी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और नानी के घर बहुत सारा प्यार मिलता था। जब छोटे बच्चे थे तो नानी के घर शरारतें भी किया करते थे, लेकिन वहाँ पर कुटते भी थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। नानी के घर हर समय हंसते हंसते रहते थे और वाकई में नानी का घर बहुत प्यारा होता है। क्या बात है जी। हाँ श्रोताओं, वो बचपन की यादें और नानी का घर हम कभी नहीं भूल सकते और वो तो हर पल हमारे साथ ताज़ा रहती है, नानी के घर की यादें। और निश्चित ही और उस परंपरा को हम आज भी निभा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, नानी के संग हर तरह का प्यार दुलार मिलता है। और वहाँ गए तो एक ऐसा छोटा सा संसार है जहाँ पर हम कुछ दूसरी जगह नहीं सीख सकते, पर नानी के घर बहुत कुछ सीख जाते हैं प्यार प्यार में, उनके दुलार में।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत। हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है ननिहाल गगर। हमारे श्रोताओं की बहुत सारे मैसेज मिले हैं, लेकिन श्रोताओं आपको लिखना है आज की थीम से संबंधित, क्योंकि आपने जो लिखा है वो हमारे थीम से मैच नहीं करता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं आप हमारी थीम से संबंधित अपने विचार हमें लिखते हैं, निश्चित ही हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और आप सभी श्रोताओं का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं गाँव हलालपुर से अमित कुमार। आप लिखते हैं कि नानी का घर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पहले मैं नानी के घर जाया करता था, पर अब आज भी जाता हूँ क्योंकि हमेशा मुझे नानी का घर बहुत ही प्रिय है। क्या बात है अमित कुमार जी, धन्यवाद आपके इस सुंदर से मैसेज के लिए।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है सिंधौली मीरगंज बरेली से जी शानवार से इमरान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान और इनकी परिवारजन लिखते हैं कि नानी के घर बिताए गए छुट्टियां जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होती है। वहां का प्यार, अपनापन, स्वादिष्ट पकवान, दोस्तों के साथ खेलना और परिवार के साथ बिताए गए हंसी खुशी के पल आज भी दिल को सुकून देते हैं। लिखते हैं कि नानी की कहानियाँ, उनकी दुआएं और गांव का सादा वातावरण खुशियों को यादगार बना देता है और ये अनमोल यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रहती है और जीवन भर मुस्कान देती है। नानी के आंगन की खुशबू आज भी याद आती है, नानी के आंगन की खुशबू आज भी याद आती है। बचपन की वो प्यारी छुट्टियाँ दिल को बहुत ही भाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर सी इन पंक्तियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज लिखते हैं आप रोशन आबाद हरिद्वार से। लिखते हैं कि जब नानी के घर जाया करती थी तब हमारा पूरा ननिहाल, पूरा हमारा मोहल्ला हमारा अपना हुआ करता था और सभी आस पड़ोस के लोग भी हमारा बहुत प्यार किया करते थे। और लिखते हैं कि वहाँ का बचपन, वहाँ की यादें और वो ननिहाल के दिन हमें आज भी याद है, जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है अभिनव जी, धन्यवाद श्रोता हूँ। आपने निश्चित ही बहुत अच्छा आपने यादें का जिक्र किया है ननिहाल की। और कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज लिखते हैं आप हैं डॉक्टर रंजीता जगुरी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से। लिखते हैं कि नानी का घर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जब हम बचपन में नानी के घर जाते थे तो मामा जी के बच्चों के साथ खेलना सबसे बड़ा सुखद अनुभव होता था। कितनी भी शैतानी करें कभी भी डांट नहीं पड़ती थी। अपने आज की थीम नानी का घर रखकर बचपन के दिनों की याद दिला दी, जिसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने अपने विचार हम तक प्रेषित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज जो आप लिखते हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनुनानु, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी ने मैसेज लिखा है कि आज की थीम अच्छी है। लिखते हैं कि हमारे घर पर एक लड़के का बच्चा है जो हर समय लिखते हैं कि नाना नानी को याद करता है लेकिन मोबाइल के माध्यम से, और मोबाइल पर वो बात भी करता है जी। बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन श्रोता हम छोटे बच्चों को निश्चित ही हमें मोबाइल से दूर रखना चाहिए क्योंकि मोबाइल बच्चों के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और कार्यक्रम में अगला मैसेज है लेकिन उससे पहले ले लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज है हमारे श्रोता लिखते हैं यहाँ पे शांति निवास लहेगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुराड़े वंदना आशीष और दीपक कुराड़े लिखते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है ननिहाल का घर और नानी का घर का जिक्र हुआ तो हम यही कहेंगे कि नानी की याद आती है तो आंखों में आंसू आते हैं कितना स्नेह और प्रेम था उस जमाने में पूरा परिवार एक होता था सबको नाना नानी का प्यार मिलता था पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम देख रहे हैं कि शादीशुदा होते हुए भी बहू पति सब लोग अलग अलग रहते हैं ऐसे माहौल में नन्हे बच्चों को नाना और नानी का प्यार कहाँ से मिलेगा फिर वो बच्चे मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि काश वो ज़माना फिर लौट कर आए और हम कहें कि अगर हम बच्चे होती और नाम हमारा होता खैर आज की थीम बचपन की यादें ताज़ा कर दी कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है धन्यवाद श्रोताओं आपने हमें मैसेज लिख भेजा श्रोताओं ननिहाल का घर सिर्फ एक घर ही नहीं होता बल्कि उसमें वो प्यार होता है वो दुलार होता है वो सब कुछ होता है जो हम बचपन में सीखते हैं और बचपन की सीखी बातों को हम अपनी ताउम्र बिताते हैं जी हाँ श्रोताओं आज चाहे मोबाइल आने से सब कुछ बदल गया हो लेकिन श्रोताओं नानी का घर तो नानी का घर होता है।

0: श्रोताओं, ननिहाल का घर, नाना नानी का प्यार और दुलार आपको इसी तरह मिलता रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार आपके, गीत हमारे। FM 100.5 पे का हर्ष पर आकाशवाणी का ये 13 दिन केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति जिला और राज्य सहकारी बैंकों की वेतन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कर 1 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। खिलाड़ियों की सुविधाओं, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस, मिले ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में खेतों में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प में 1 व्यक्ति की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसंख्यकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। आपदा मित्रों और ग्रामीण स्वयंसेवकों को खोज एवं बचाव, बाढ़ प्रबंधन, वाटर रेस्क्यू और आपदा से निपटने की तकनीकों का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश हित में लिए गए निर्णयों से भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। आप सुन रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के 13 दिन केंद्र से बोल रहे हैं। 10:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखावा और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। रिपीट, कट एंड रिपीट द होल पॉइंट। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरे पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ

बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और साथियों को। फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। गीत था अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत दिया था विशाल डल्लानी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और साथियों की। फिल्म का नाम चुप चुप की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आइए अब सुनते हैं नदीम शर्वन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की फिल्म का नाम धड़कन।

ये स्वर थे उदित नारायण कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की फिल्म का नाम था धड़कन। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिल्म संगीत अब आप सुन पाएंगे दिन में 11 बजे वर्षा फरमाइश के अंतर्गत, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, शाम 4:30 पर कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत। हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालमंडल। ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत गठित चयन समिति की 4 जून 2026 को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। खोजबीन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराएगी। उत्तरकाशी जिले के यमुना वैली क्षेत्र में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयां वितरित की। यमुना वैली की कीट पट्टी की

उनकी मदेश तथा आसपास के गांवों में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान 83 ग्रामीणों की बुखार, सर्दी जुकाम, शुगर और रक्तचाप की जांच की गई। इनमें बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं मोरी ब्लॉक के सुदूरवर्ती भीतरी गांवों में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 120 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत ग्राम सभा नागरगांव थाना में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 70 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनस्वास्थ्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा टीमों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। आगामी मानसून अवधि को देखते हुए चंपावत में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT गठित किए जाएंगे, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सकें। जिला प्रशासन के अनुसार 15 जून तक सभी तहसीलों में QRT का गठन किया जाएगा। इन दलों में राहत एवं बचाव, राहत वितरण, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण तथा जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण से जुड़े अलग अलग समूह शामिल होंगे। राहत एवं बचाव दल में SDRF, पुलिस अग्निशमन विभाग, जल पुलिस, सेना, आपदा मित्र, NCC, NSS, स्काउट गाइड, आपदा सखी और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राहत वितरण और पुनर्वास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक QRT दल की हर माह कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएं। साथ ही जून से सितंबर तक प्रत्येक माह की 1, 11 और 21 तारीख को तहसील स्तर पर समीक्षा बैठक कर आपदा प्रबंधन तैयारियों और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरिद्वार जिले के सभी विकासखंडों में जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों में कुल 2,125 लोगों ने भाग लिया। इनमें 88 लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया, जबकि 988 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविरों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्राकृतिक खेती तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पशुपालन और उद्यान विभाग सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं से अवगत कराया। लक्सर विकास खंड में ग्रामोत्थान योजना के तहत 5 महिलाओं को फूड वैन संचालन के लिए 6,00,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विविध कलाकारों के गाए पंजाबी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों की गायी पंजाबी लोकगीत।

0: बंदा सोचे सौ सौ गल्ला होनी सब तो डाडी, बंदा सोचे सौ सौ गल्ला होनी सब तो डाडी। मन दे वस दी गल न कोई लिखियां तुरत कदीरां जान न टालणियां, सुपने दे विच दे गया यार वखालणियां, सुपने दे विच दे गया यार वखालणियां।
1: तुर चलिया परदेस गबरू गोरी दा,
0: सुपने दे विच दे गया यार वखालणियां,
1: तुर चलिया परदेस गबरू गोरी दा।
2: आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी लोकगीत।

0: अलख निरंजन।
1: बाबा जी तुझे तो सारा दिन चिंता ही करताई जांदे हो।
0: गल ए है बीबी, अमलियां दे वेड़े कुंडी सोटा ते संतां दे डेरे चिमटे खड़कदे ही हुंदे ने।
1: अच्छा जी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए पंजाबी लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम वत्सएप फरमाइश, जहां आप सुनेंगे अपनी पसंद के गीत और आपकी पसंद के खूबसूरत नगमे लेकर मैं वर्षा पंत आपके बीच हाजिर हो चुकी हूं। तो श्रोताओं, जल्दी से अपने गीतों की फरमाइश अपने नाम और पते के साथ हमें लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731, यानी कि 7088-000-731, और तैयार हो जाइए संगीत के इस सुरीले सफ़र के लिए।

इस संदेश के साथ जो हम तक पहुंचा है, सूरज रेडियो श्रोता संघ सहसपुर लोहारा दुनिया खर जिला कबीरधाम से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिद शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव और रेडियो देहरादून से अमन अफरीदी की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अर्पण।

श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा की। साथ ही गांव भोजपुरा तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा की। अगला मैसेज हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: श्रोताओं कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें मिला है भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद तेलंगाना से गोपाल नाई और उमा महेश्वरी की इसके साथ ही अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज सिफाकत ने इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम अमजद अली लाडली बेबी निशा इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई लोखंडे शैलेश लोखंडे प्रतीक्षा लोखंडे स्वप्नील लोखंडे और लक्षिता लोखंडे की अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है गांव कैरो जिला तारन तारन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद और पोत्रा गुरशबद की इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुँचा है दरियापुर वाबली महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और यशो अशोक येले की इसके साथ ही शेरी वडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर आदित्य दामोदर की तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म का नाम है आराधना और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है देवरी भाटपारा से KR साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली छत्रिय की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा और नंदिनी शर्मा की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत और रोजेस की। इसके साथ ही चंडीगढ़ से शैफाली, शैफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा की। अगली फरमाइश हमें मिली है गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी वोटखे, श्रीमती नंदा वोटखे, हनुमान वोटखे और उत्तम जमदाड़े की। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सफ़र का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर, और अभी आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है। शाहजी नगर देगलूर जिला नालेन महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे की। इसके साथ ही अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान और सोफिया खान ने। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े की। इसके साथ ही पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शदाब की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है मोहली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है बंगाली पंजाब नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े और जानवी रंभाड़े की। साथ ही काशी निवास नागपुर से हर्षल रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े की। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है ये अगला गीत फिल्म अपनापन से, जिसको गाया है सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार ने।

0: Career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है, पाखुड़ झारखंड से बेहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत की, इसके साथ ही पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु और अर्णव आनंद की। तो आइए श्रोताओं, अगली फरमाइश हम आपको बताते हैं जो हम तक पहुंची है। रुड़की से पूजा सैनी की, इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है। धर्मवीर दिल्ली से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ की, इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है। गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, समशुल कमर राही, इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे की, इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। दंतरेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की, इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन, सुरेखा सैन का, अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है कुदरत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Future proof your career with UBES up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. Applications close 29 April. Apply now at ubes.ac.in.
6: श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की। इसके साथ ही महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रत्नामाला और कुमकुम गुड़िया की। अगला मैसेज हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा ने निवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग की। श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है पटियाली रोड गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आमिर हुसैन बेगम, तैयबा शेख, फौजिया शेख और आहिल हुसैन की, साथ ही अरहान हुसैन की। तो अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है मोहाली, फतेहगढ़, लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक की। तो आइए आप सबकी फरमाइशों पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगली फरमाइश हम शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की। साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है राजनगर कांति निकेतन से कुशवेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता और ऐशबाग पिपल कॉलोनी से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता और नीलम गुप्ता की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है राही नगर गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातमा, अनु खान, अदनान खान, फैज़ान खान और ताबिश खान की। इसके साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, अरीज रज़ा खान, फैज़ा नाज, नाजिया खान। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम उम्मेदा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव की। इसके साथ ही छत्रपति संभाजी नगर से मंगलेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है कुरासी बहसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला मैसेज जो हम शामिल कर रहे हैं वो हम तक पहुंचा है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा की। साथ ही पिंगावाला चौक गौरैया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़ की अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन की। साथ ही चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना की अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जे एस रामगढ़िया की। अगला मैसेज हमें मिला है डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू की अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मन्नू की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। ग्राम हिंगड़ी अलोड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नयमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। जिला वरंगल से मोहम्मद खाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया की अगला मैसेज हमें मिला है। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लैला चौरसिया और पवन गौड़ की। तो आइए आप सब की फरमाइशों पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है नागिन और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: श्रोताओं, आशा भोसले और मोहम्मद रफीक के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम वत्स फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister said that prices of stents and knee implants have become affordable and this has helped many people. Mr. Modi highlighted that medical education has become more accessible to people due more institutions and seats being available. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on this ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also

0: also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. In a social media post, Mr. Goyal highlighted how this transformation is rooted in a deeply compassionate thought that a medical emergency should never turn into a financial crisis for any family. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamich Lia Sri Lanka, was held at Gal Face Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries in a celebration of the Indian classical dance and cultural heritage. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatanatyam while fostering cultural ties across borders. The government has appointed noted economist Professor Alakh N. Sharma as chairman of a high-level technical expert committee on labour statistics. The committee has been constituted to strengthen and periodically review labour market indicators and assess the evolving structure of India's labour market. The White House has said that the US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM News Headlines।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड सरकार ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 5 सदस्यीय खोजबीन समिति का गठन किया। उत्तरकाशी जिले के यमुना वैली क्षेत्र में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। शिविरों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गईं और प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज की। 15 जून तक सभी तहसीलों में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT गठित करने के निर्देश। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेतों में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत, चार गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश हित में लिए गए निर्णयों से भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार जिले के सभी विकास खंडों में जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में 2,125 लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ एवं जानकारी प्रदान की गई। चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO सुपरवाइजरों, IT वॉलंटियर्स और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को EFS डिजिटाइजेशन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डेटा एंट्री, ऑनलाइन सत्यापन और डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। और राज्य में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग का आने वाले दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:12 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कन्नड़ भाषा में सामुदायिक कान शिक्षा पाठ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं। किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। रख लिया है? अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप सब लिख लीजिए। हाडू तिहवु हारु तिहवु,
1: हाडू तिहवु हारु तिहवु,
0: कडल करेय खगकुला,
1: कडल करेय खगकुला,
0: यनी तो मुगिला,
1: यनी तो मुगिला,
0: उद्द अगला,
1: उद्द अगला,
0: जी की दानी तू,
1: जी की दानी तू,
0: बांदड़ा,
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाक,
1: बान लोक नगुव नाक,
0: हारो हक्की पालिगे,
1: हारो हक्की पालिगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
1: व्योम कानुआ बगे,
0: हसीव मरेसी,
1: हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: हाँ, तो अब बच्चा आखिर सेंसर। हाँ। वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: हाँ। गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन से राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

0: मालूम हो गया ना, इसके लिए जो स्वर आते हैं वे भी सुन लीजिए।
1: वानलोकन भुवनाक माम माम गम गरि सरि
2: माम माम गम गरि सरि।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

0: अंतरा तो पूरी तरह से याद हो गया, तो अब तीसरा अंतर सीखेंगे।
1: मुक्त गगन नूर पाला,
2: मुक्त गगन नूर पाला,
1: नीज शक्ति रेखे गे।
3: अभी आपने सुना कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 होने को है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल मंडल।

0: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ वो भी।
1: बच्चों संडे को बाल मंडन में जरूर आना।

0: जय हिंद बच्चों,
1: जय हिंद।
0: बाल मंडल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अभिज्ञा दीदी। आज कार्यक्रम में हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और धमाल, क्योंकि हमें पता है आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम बार बार क्यों बदलता है? अब देखिए, कल बहुत तेज धूप थी, आज बारिश हो रही है, कभी अचानक से गर्मी हो जाती है तो कभी ठंड लगने लगती है, कभी ठंडी हवाएं तो कभी कोहरा छाने लगता है। प्रकृति का कितना सुंदर खेल है ना। लोग गर्मी के मौसम में ठंडा पीना पसंद करते हैं, आम और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं, और फिर आता है वर्षा ऋतु का मौसम। बहुत से बच्चों को बारिश में भीगने में भी मज़ा आता है ना। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, बच्चे रंग बिरंगी छतरियां लेकर स्कूल जाते हैं, और हाँ, आप में से बहुत से बच्चे कागज की नाव भी तो चलाते हैं ना। और फिर आती है सर्दी, और तब धूप में बैठना अच्छा लगता है, और जब चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, प्रकृति मुस्कुरा उठती है, तब आती है बसंत ऋतु। बच्चों, हर मौसम की अपनी खासियत होती है, हमें मौसम के अनुसार खान पान और पहनावे का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। हमें पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जिससे मौसम का संतुलन बना रहे। हमारे साथ एक नन्ही सी प्यारी सी परी है जो हमें बहुत देर से देख रही है। बताइए आपका नाम क्या है?

0: मेरा नाम पंखुड़ी
1: बड़ा प्यारा सा नाम है। बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
0: है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ।
1: अपनी हॉबीज बताइए, क्या अच्छा लगता है आपको?
0: मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है।
1: अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? कोई भी?
0: मैथ
1: मैथ पसंद है? अरे वाह, बताओ आज क्या सुना रहे हो?
0: रख
1: ठीक है, सुनाइए।
0: अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्ना बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था, तभी बीज ने ली अगरास जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया दुनिया परी दिखाई, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बड़ा इधर धरती में नीचे उधर समाया, तने डालिया पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्ना बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए, छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ जाती। धन्यवाद।
1: और अब हमारे साथ है, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम आयुषी डंगवाल है और मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरेलू महिला। रामू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें काफी सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, यह पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उस दिशा में चल पड़ा। वह पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि सभी पैसे सुरक्षित है। वह रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। रामू ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना। उसने समाज में ईमानदारी और अच्छाई का महत्व समझाया और सभी को साबित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और अच्छाई का मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। रामू की कहानी आज भी गांव में एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। धन्यवाद।
1: आयुषी ने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है ना बच्चों? आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं बाल गीत।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का मनपसंद बाल मंडल. क्या आप जानते हो बच्चों कि हमारे शरीर में बहने वाला रक्त किसी की जान बचा सकता है? वो इस तरह कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए बड़ी सर्जरी हो या किसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा हो तब उसे रक्त की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे समय में रक्तदान करने वाले लोग किसी के लिए जीवनदाता बन जाते हैं आपको बता दें हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है बच्चों रक्तदान करने से जो स्वस्थ व्यक्ति है ना उसे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इससे जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है हालांकि बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते लेकिन आप सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी रक्तदान के लिए जागरूक कर सकते हैं रक्तदान महादान है बच्चों विश्व रक्तदाता दिवस पर हमने डॉक्टर नितेश गुप्ता से बातचीत की आइए सुनते हैं आपसे बात कर रही हैं किरण जोशी
4: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता जी और आज हम इनसे बात करने वाले हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर तो सबसे पहले नितेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: सर विश्व रक्तदाता दिवस ये क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई
5: इसकी शुरुआत सन 2004 में रेड क्रॉस सोसाइटी WHO और ISBT इनके माध्यम से की गई ये दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टाइनर जिनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बोलते हैं जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ढूंढा था और की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उनके जन्मदिन की खुशी में इस दिन हम लोग जो हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं उन लोगों का हम धन्यवाद करते हैं
4: रक्तदान करने के लिए क्या कोई विशेष क्राइटेरिया है या ऐसे कौन कौन से व्यक्ति या महिला पुरुष हैं जो रक्तदान कर सकते हैं
5: जी हाँ रक्तदान करने के लिए क्राइटेरिया है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है वो रक्तदान कर सकता है वजन 45 किलो होना चाहिए हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए बाकी जो आपका मेडिकल चेकअप होता है जब आप किसी ब्लड सेंटर में या किसी अस्पताल में रक्तदान करने जाएंगे तो आपके रक्तदान से पहले कंप्लीट चेकअप होगा आपका BP आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा कोई आपको बीमारी तो नहीं है सारे चेकअप के बाद ही अगर आपको फिट पाया जाता है तभी आप रक्तदान कर पाएंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका रक्तदान करने के बाद उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जिस मरीज को वो रक्त चढ़ेगा तो उसे भी फायदा होगा
4: तो सर ये रक्तदान की प्रक्रिया किस तरह से होती है और ये क्या पूरी तरह से सुरक्षित है
5: जी हाँ रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किसी भी ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक में जाना होता है हमारे देश में बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक को नहीं चला सकता तो जितने भी ब्लड बैंक होते हैं उनको सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला होता है जो ब्लड बैंक होते हैं उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत काम करना होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत सरकार ने सेट करे हुए हैं किस तरीके का सामान यूज होना है जो इक्विपमेंट यूज होगी वो पूरे तरीके से स्टराइल होती है कई लोगों को ये डर होता है कि खून देने से क्या हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी क्या ये जो सुई है ये सेफ है क्या ये ब्लड बैग सुरक्षित है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो स्टराइल होती है और एक डोनर में एक ही बार यूज होती है कोई भी चीज दोबारा यूज नहीं होती
4: जी सर एक बार किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो कितने टाइम बाद वो दोबारा रक्तदान कर सकता है
5: रक्तदान करने के लिए एक हेल्दी मेल यानी कि पुरुष 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है और महिलाएं यही चीज 4 महीने बाद कर सकती
4: है। इस बीच कोई परेशानी होती है उस महिला या पुरुष में तो उसमें भी फिर उनके पहले टेस्ट होते होंगे तभी वो उस चीज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हाँ। आप रेडी हैं।
5: पहले तो आपका डोनेशन इंटरवल जिसे बोला जाता है 2 डोनेशन के बीच में वो पूरा होना चाहिए। दूसरी बार भी अगर कोई रक्तदान करना चाहता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा मेडिकल और जो क्राइटेरिया है आपके वो किए जाएंगे और आपसे प्रीवियस हिस्ट्री भी ली जाएगी कि पिछली बार जब आपने रक्तदान दिया था उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको कोई दिक्कत हुई थी, क्या आपको चक्कर आए थे, आपकी तबीयत खराब हुई थी। यदि किसी को पहली बार रक्तदान करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है तो हम उसको मना करते हैं आगे कभी भी रक्तदान करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही अनकॉमन चीज है, 1% से भी कम लोग होते हैं जिनको रक्तदान करने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा होना, ये चीजें हो जाती हैं। और रक्तदान करने के बाद जो भी हमारे ब्लड डोनर होते हैं हम उन्हें 20 से 25 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखते हैं जब तक हमें इस चीज का भरोसा नहीं हो जाता कि अब हमारा डोनर बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच सकता है, तब तक हम उन्हें ब्लड बैंक से कहीं जाने नहीं देते।
4: जी सर, आपने बताया हाँ कि जैसे उनको कोई परेशानी, चक्कर आना या और अदर चीजें, तो मैं यही क्वेश्चन जानना चाह रही हूँ कि जैसे लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, तो ऐसी क्या चीज है कि हाँ हम ये करें या ना करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों पे कोई इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है?
5: देखिए, ऐसा कोई नकारात्मक असर ब्लड डोनेशन का नहीं होता है बल्कि आपके शरीर को भी ब्लड डोनेशन करने से कई तरीके के फायदे होते हैं। कई लोगों का खून काफी गाढ़ा होता है, खास तौर पे जो पर्वतीय इलाकों में लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो रेड ब्लड सेल ज्यादा मात्रा में बनते हैं कम ऑक्सीजन की वजह से, तो गाढ़ा खून होने की वजह से कहीं पर भी खून के थक्के बनने का खतरा होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम लॉस होगा, हीमोग्लोबिन नीचे आएगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, नए रेड ब्लड सेल बनेंगे, बोन मैरो आपका दोबारा सेल्स बनाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, तो इस तरीके से शरीर को फायदे ही फायदा है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये छोटी मोटी चीजें ब्लड डोनेशन करते वक्त जो हो जाती है ये थोड़े समय के लिए ही होती है, तो लॉन्ग टर्म ब्लड डोनेट करने का कोई नुकसान नहीं है।
4: ओके, और सर ब्लड डोनेशन के बाद कितने टाइम पीरियड के लिए, जैसे कुछ आवर्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, ऐसा है कि आप उस टाइम पे कुछ खा या पी नहीं सकते हो?
5: नहीं, ऐसा कुछ
4: ब्लड डोनेशन से पहले और ब्लड डोनेशन के बाद भी।
5: देखिए, ब्लड डोनेशन से पहले जब भी कोई हमारे पास डोनर आता है तो हम उनकी रिसेंट हिस्ट्री जरूर लेते हैं। जो हमारे हेल्दी ब्लड डोनर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जो रेगुलर डोनर होते हैं तो वो ऐसी चीजें नहीं करते जिस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, जैसे नशे के पदार्थों का यूज करना, शराब का सेवन करना। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं, रेगुलर अपनी मील्स लेते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमेशा सेलेक्ट होंगे। ब्लड डोनेशन से पहले आपका कुछ भी खाने पीने की ऐसी कोई मनाही नहीं है और ब्लड डोनेशन के बाद भी किसी चीज की आपको मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन ये नशे वाले पदार्थ, इनके लिए मना किया जाता है। ब्लड डोनेशन के बाद हम डोनर को बोलेंगे कि भाई 4 घंटे तक आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि यदि आपको थोड़ी देर में भी कोई दिक्कत होती है तो गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो सकता है। जिस दिन डोनेट करा है उस दिन हेवी एक्सरसाइज या जिम ना करें, उस दिन आप स्विमिंग ना जाएं, आग के काम ना करें, तो ऐसे हम एहतियात बरतने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज का आपको परहेज करना या किसी चीज से बचना।
4: सर, लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए हम किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं? जैसे कोई जाना चाहता है कि हाँ मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो उसे कहाँ जाना है, क्या फर्स्ट स्टेप लेना है, इसके बारे में बताइए कि वो कैसे अपना ब्लड डोनेट कर सके।
5: कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज में या ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर में जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो। हाँ, मोटिवेट कैसे होना है ब्लड डोनेशन के लिए? मोटिवेट करने के लिए हमने जो अपने प्रयास करे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जो हमारे युवा हैं, अगर वो कम उम्र में ही ब्लड डोनेशन पूल का एक पार्ट बन जाते हैं तो कोई 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर रेगुलर ब्लड डोनेशन करता है तो 60 साल की उम्र तक कई बार ब्लड डोनेट कर देता है। ऐसे हमारे कई ब्लड डोनर्स हैं जिन्होंने 100-100 बार ब्लड डोनेट करा है और उन्होंने काफी कम उम्र से ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे को मोटिवेशन के लिए हमारे युवाओं को बहुत जल्दी से इसमें रिक्रूट करना चाहिए। इसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी मोटिवेशन ला सकते हैं, जैसे ये आपका प्रोग्राम है ये भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है, बाकी आपके पैम्फलेट, बैनर, सिंपोजियम, स्पीचेस। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और हमारा डोनर पूल बढ़े।
4: सर, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं या हिचकते हैं उन्हें किस तरह से हम ब्लड डोनेशन के लिए यानी रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं?
5: हमारी जो जनसंख्या है वो 1 अरब से भी ज्यादा है और हर

0: डॉक्टर नितेश गुप्ता से किरण जोशी की बातचीत सुन रहे थे। चलिए अब नन्हे साथियों से मिलते हैं। आपका नाम क्या है? प्रयास
1: कुमार।
2: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: फर्स्ट।
2: आप क्या सुनाओगे हमें?
1: एक पोएम सुनाऊंगा।
2: नाम क्या है पोएम का?
1: टू लिटिल डिकी बर्ड्स।
2: ठीक है, सुनाइए।
1: टू लिटिल डिकी बर्ड्स सेट अप ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर, द अदर नेम पॉल, फ्लाई नेम पॉल अदर नेम पीटर, द अदर नेम पॉल। थैंक यू।
3: मेरा नाम रिक्तिश है, मैं कक्षा एक में पढ़ता हूँ। मैं आपको ट्रैफिक लाइट सुनाता हूँ।

0: I say, wait, green light, what do you say? I say, go, wind away.
1: अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। आपका नाम क्या है?
2: माय नेम इज विभु श्रीवाल। मेरी हॉबी गेमिंग, वीडियो गेमिंग, कॉम्पिटिटिव गेमिंग, और कभी कभी लाइक रैप वगैरह लिख लेता हूँ मैं।
1: मैंने सुना है कि आप देहरादून पहली बार आए हो, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
2: काफ़ी अच्छा लगा। लाइक अभी तक जहाँ भी गया हूँ मैं, काफ़ी मज़ा भी आया, और लाइक जो अभी वेदर भी हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल आने जाने के रास्ते में भी काफ़ी लाइक अच्छी वाइब आ रही है।
1: कुछ कहना चाहेंगे?
2: 9-10 सिलेबल पर से शुरुआत से रुके बिना करूँ कम बैक, पूरा गाना वन टेक मिले तो रन वे, जैसे फीलिंग आने लगी हर संडे, चौपरा पेशाब पे लगी तलवार, का फ्लो भी तो आना चाहिए हर बार, वन अभी रैपर जो खुद को बोले हिप हॉप के मशरूम से, बोलो कभी सुना है कि चौपरा पे यार।
3: बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
1: और अब हमारे साथ है, अपना नाम बताइए।
4: शिवांश।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: फोर्थ।
1: ये बताओ आपको क्या करना अच्छा लगता है, हॉबी क्या है आपकी?
4: मुझे गेम खेलना।
1: गेम खेलते हो बाहर फील्ड में खेलते हो या
4: घर में वीडियो गेम्स खेलता हूँ?
1: अच्छा, आप ये बताओ कि आज क्या सुनाओगे हमें?
4: आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोसला सूखे तिनको से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं उड़ी दूर तक पंख फैला के पंख पसार, तभी मेरे समझ में आया कितना बड़ा है यह संसार। थैंक यू।
1: और अब कौन है हमारे साथ?
5: क्या नाम है आपका?
6: अनुष्का रावत।
5: कौन से स्कूल से हैं आप?
6: पुलिस मॉडर्न।
5: और कौन सी क्लास में?
6: 7।
5: आप क्या सुनाएंगे हमें?
6: आज मैं आप सभी को एक गीत सुनाना चाहती हूँ जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी।
5: सुनाइए।
6: है

0: हम उनके कोने कोने में उद्मय का दीप जलाएंगे। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा गीत सुनाया अनुष्का ने।
2: आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि मोबाइल से रहें दूर, खेलें कूदें भरपूर, तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि आजकल मोबाइल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पढ़ाई, जानकारी और मनोरंजन के लिए इसका उपयोग हम सभी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है?

0: लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या हो सकती है। और मालूम है, अंधेरे में रात को मोबाइल देखना तो बहुत ही गलत है। आपकी आंखों को बहुत नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे हमें कम दिखाई देने लगता है। इसके अलावा हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करें, यानी सिर्फ काम के लिए उपयोग करें। अपना समय खेल कूद में लगाएं। जब आप मैदान में दौड़ते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल या कोई खेल खेलते हैं, तो आपका शरीर मजबूत बनता है और मन भी खुश रहता है। खेल आपको अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाते हैं, इसलिए रोज कुछ समय बाहर खेलना बहुत जरूरी है। और आपको पता है ना, आप हर शनिवार दोपहर 3:30 बजे आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियोज में आकर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें। और अभिज्ञा दीदी को आप कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।
1: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ, वो भी।
2: बच्चों, संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बालमंडल आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के खलियाण बांगर क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री गडकरी ने कहा कि ई संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलें देश में समावेशी और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के जखौली विकासखंड के खलियाण बांगड़ क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए तथा नुकसान का शीघ्र आकलन कर नियमानुसार मुआवजा और अन्य सहायता प्रदान की जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए सभी विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी रखें। उन्होंने राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाओं, जेसीबी मशीनों और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टपकेश्वर मंदिर प्रांगण में विशेष सफाई अभियान में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहीद दुर्गा मल्ल मंडल के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर परिसर में एवं तमसा नदी में स्वच्छ कार्य किया और आमजन को स्वच्छता के

0: जागरूक किया। श्री जोशी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान सहित अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक सतत सामाजिक संकल्प है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कल आयोजित होने वाले श्री कैंची धाम मेला के मद्देनजर भीमताल और बेताल घाट विकासखंड अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है, जबकि इन विकासखंडों के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाज के लिए सामान्य रूप से खुले रहेंगे। बीमार पशुओं को अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक एवं स्वयं पशुपालकों के घर द्वार तक पहुंचकर उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिले में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत संचालित सेवा पौड़ी के द्वारिखाल, एकेश्वर, जहरीखाल, कलजीखाल, नैनीडांडा, पाबो, पौड़ी तथा थलीसैण विकासखंडों में 8 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। इन यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को उनके घर द्वार पर ही निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा का उद्देश्य पशुपालकों को त्वरित, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
1: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम के शुभारंभ जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल हमें प्राप्त हो चुकी हैं। ये कॉल जो प्राप्त होती हैं ये पशुपालन विभाग के 19 बास टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को अपने अपने ड्यूटी मुस्तैदी से निभाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सोमवती अमावस्या को लेकर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए यातायात प्लान बनाया गया है। साथ ही पार्किंग स्थलों को भी आरक्षित कर दिया गया है।
3: सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है। और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी है, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी है और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी है। और इसमें हमारे SSB पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में SDRF, NDRF, BDS स्क्वाड, ATS और विभिन्न यूनिट जो हैं वो इसमें जो हैं हमारी लगी हुई हैं और पूरी तरह हम इस गियर में।
0: मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि मनसा देवी पैदल मार्ग को भी खोलने का आग्रह किया है ताकि भीड़ के दबाव को अलग अलग भागों में बांटा जाए।
4: सोमावती अमावस आने वाली और सोमावती में मैं समझता हूँ हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ DM साहब ने कहा है, जिस समय यहाँ भीड़ होता है नीचे से रोपवे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, की रास्ता अपने पैदल रास्ता देखा होगा और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए, वो भी खुल जाए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं।

0: सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान महादान कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। इस अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा चमोली के चेयरमैन ओम प्रकाश डोभाल ने कहा कि समाज सेवा के अनेक माध्यम हैं, लेकिन किसी का जीवन बचाने में रक्तदान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कई जिलों में बारिश, बिजली चमकने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून समेत 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 22 जून के आसपास राज्य में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। फिलहाल प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के खलियाण बांगड़ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे ये पहला गीत। फिल्म का नाम है शिकारी और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब आपको अगला गीत सुनाते हैं फिल्म खिलाड़ी से, जिसको गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी खास बन जाते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा नगमा फिल्म अजनबी से, जिसको गाया है अदनान शामी और सुनिधि चौहान ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर, और अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अगला गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम है यस बॉस, और इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं? हाँ।

श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में ये अगला गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है लकी।

श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसको गाया है सोनू निगम और माँ लक्ष्मी अय्यर ने। साथ ही इस गीत के बोल दिए हैं जयदीप ने और म्यूज़िक दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. More from our correspondent.
1: In a spectacular celebration of shared culture and unity, more than 5,000 Bharatanatyam dancers came together at Colombo's Goldfields Green today, creating history with the world's largest Bharatanatyam dance lesson. The Guinness World Record citation was presented following the performance, with Indian High Commissioner Santosh Jha receiving the certificate on behalf of the performers and organizers. The breathtaking performance transformed the iconic seaside venue into a vibrant showcase of tradition, discipline and cultural excellence. The event turned out to be a landmark moment for classical dance and a proud tribute to the enduring cultural bonds between India and Sri Lanka. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
0: In Odisha, the three-day Raja festival began today with a celebration of Pahili Raja, ushering in the onset of the monsoon and the Odia month of Ashada. The festival symbolizes reverence for Mother Earth and reflects the state's rich agrarian traditions. More in this report.
2: The Raja festival has begun across Odisha from today with the observance of Pahili Raja, one of the state's most cherished cultural celebrations. Raja honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Podo Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favourable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप वैश्विक निवेशक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे
4: कार्यक्रम में नवाचार उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा
5: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध।

0: उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराहन के 2:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों। साथियों, जब देश पर संकट आता है तब कुछ सैनिक अपने साहस से इतिहास रच देते हैं। ऐसे ही एक योद्धा थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल, जिन्हें कश्मीर का रक्षक कहा जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसको गाया है तनिष्क बागची और बी पराग ने। फिल्म का नाम है योद्धा।

14 जून 1899 को जम्मू के बगुना गांव में जन्मे राजेंद्र सिंह एक सैनिक परिवार से थे। बचपन से ही अनुशासन, देशभक्ति और वीरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के बल पर जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस पर में उच्च पद प्राप्त किया। सितंबर को उन्हें राज्य सेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। आइए अब आपको अगला गीत सुनाते हैं फिल्म नीरजा से कविता सेठ की आवाज़ में।

साथियों, अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर में संकट के बादल मंडरा रहे थे। दुश्मन समर्थित हजारों कबायली हमलावर कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। श्रीनगर खतरे में था और पूरा राज्य अनिश्चितता से गुजर रहा था। 22 अक्टूबर 1947 को हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोला। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल 100 से 150 जवानों के साथ उरी की ओर रवाना हो गए। सामने हजारों हमलावर थे, लेकिन इनके इरादे पहाड़ों से अधिक मजबूत थे। उन्होंने एक असाधारण सैन्य रणनीति अपनाई। उरी के आसपास के पुलों को उड़ाकर उनकी गति धीमी कर दी। हर मोर्चे पर स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों को काफी दिनों तक रोके रखा, और यही वो अमूल्य घंटे थे जिनके दौरान जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारतीय सेना को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने का अवसर मिला। आइए अब आपको सुनाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट और इस गीत को गाया है अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने।

श्रोताओं, 27 अक्टूबर 1947 को सेरी और बेनियार क्षेत्र के पास लड़ते हुए वो गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने उन्हें पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका ध्यान केवल एक बात पे था कि दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना। अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके वीर साथियों ने दुश्मन को न रोका होता तो श्रीनगर बहुत पहले ही हमलावरों के कब्जे में जा सकता था। उनके बलिदान ने कश्मीर के भविष्य को बदल दिया और इसी कारण उन्हें आज भी सेवियर ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर के रक्षक और इमोर्टल डोगरा के नाम से याद किया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत। फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल के अद्वितीय वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र विजेता बने और हमेशा के लिए भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गए। श्रोताओं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ अपने बलिदान से इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल उन्हीं अमर वीरों में से एक थे जिनकी वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहा। आइए अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाते हैं फिल्म ब्रदर्स से, जिसको गाया है विशाल डडलानी ने।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति गीत, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ, जिसको गाया है हरिहरन ने।

ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें

0: ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: कार्यक्रम में अगला देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है भुज।

अभी आपने सुने देशभक्ति गीत आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3:10 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत जिसको गाया है सुखविंदर सिंह ने। फिल्म का नाम है ओमकारा।

कार्यक्रम गाने नए तराने में अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म हंसी तो फंसी से, जिसको गाया है सनम पुरी और शिप्रा गोयल ने।

कार्यक्रम गाने नए तराने को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं ये अगला प्यारा सा गीत फिल्म पार्टनर से, जिसको गाया है सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से, और अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म रूही से, और इस गीत को आवाज़ दी है अजीज़ कौर और दिव्य कुमार ने।

श्रोताओं गीतों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी मेलोडी हर्षदीप कौर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब तक है जान।

श्रोताओं, गानों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा और अब आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म बेशर्म से ममता शर्मा और ऐश्वर्य ऐश्वर्य निगम की आवाज़ों में।

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाने नए तराने में अब आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म ऑल इज वेल से, जिसको गाया है मीत ब्रोस और कनिका कपूर ने।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने ने तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5

0: 5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 3 दिवसीय खटीमा प्रवास के दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा चमोली के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में देवरिया ताल से चोपता तुगनाथ ट्रैक पर भ्रमण के दौरान रास्ता भटक गए 5 युवकों को DDRF एवं SDRF अगस्त्य मुनि की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक खोजकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। हरिद्वार में कल होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग के बांगर क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कल आयोजित होने वाले श्री कैंची धाम मेला के मद्देनजर भीमताल और बेतालघाट विकासखंड अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा सभी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न हुई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:02 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आशीष कुकरेती का ख्याल गायन, राग मधुवंती।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आशीष कुकरेती का ख्याल गायन राग मधुवंती, आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत।

दोस्तों, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार की जिसने अपने सपनों, मेहनत और मुस्कान से करोड़ों लोगों का दिल जीता। वो थे सुशांत सिंह राजपूत। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत जिसको गाया है अमित त्रिवेदी ने। फिल्म का नाम है केदारनाथ।

21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका दिल अभिनय की दुनिया में बसता था। अपने सपनों का पीछा करते हुए उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और मुंबई का रुख किया। आइए श्रोताओं, उनकी फिल्म काईपोछे का एक गीत आपको सुनाते हैं अमित त्रिवेदी और मोहन कानन की आवाज़ों में।

टीवी धारावाहिक पवित्र रिश्ता ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। उनकी सादगी और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन सुशांत यहीं रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। काईपोछे, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। सुशांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा रखते थे। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलशास्त्र का पूरा ज्ञान था। वे अक्सर कहते थे कि इंसान को पूरी ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं अपने कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म छिछोरे से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्टवेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: सुशांत सिंह राजपूत को उनके टीवी धारावाहिक पवित्र रिश्ता में अभिनय करने के बाद कई पुरस्कार मिले, जैसे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड और गोल्ड अवार्ड। इतना ही नहीं, अपने फिल्मी करियर में उन्हें 2014 में प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड्स, 2014 में ही स्क्रीन अवार्ड, साथ ही 2017 में बेस्ट एक्टर अवार्ड और 2017 में ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं उन्हीं की फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ये गीत अमाल मलिक और पलक मुच्छल की आवाज़ों में।

14 जून 2020 को उनके निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। करोड़ों प्रशंसकों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि इतनी चमकदार मुस्कान वाला कलाकार अचानक उनसे दूर चला गया। लेकिन कुछ लोग जाने के बाद भी यादों में जिंदा रहते हैं और सुशांत उन्हीं में से एक हैं। सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी मुस्कान हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि कुछ सितारे टूटकर भी हमेशा चमकते रहते हैं। आइए अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाते हैं, फिल्म राब्ता से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज के हमारे कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 25,00,000 से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम के 5:10 पर प्रस्तुत करेंगे हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम के 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनिएगा शाम के 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। शाम 7:00 सुनिएगा हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत नाड़ी से निदान। ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शाम के 7:40 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात के 9:30। रात 8:00 प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम काव्यांजलि। कार्यक्रम में आज की कवयित्री होंगी श्रीमती नवनिधि गुप्ता। रात के 8:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 सालों पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। और रात 10:00 सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम को हम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल दिनांक 15 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय संबंधी जानकारी।

कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा चिंतन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार, वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना का होगा। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:40 पर आप आनंद ले सकेंगे श्री रामचरितमानस गान का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र रागिनी। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह के 7:30 पर प्रस्तुत करेंगे कुमावनी लोकगीत। गायक कलाकार होंगी दीपा मेहरा। सुबह 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे हमारा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। सुबह 9:00 सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत। सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह के 9:45 पर आप सुनेंगे गर्मियों में आंखों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर राजेश तिवारी से विकास चमोली की बातचीत। सुबह 10:35 पर सुनिएगा लोक संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत। श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम के 5:10 होने को हैं। अब सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के सफर में आप बने रहेंगे मेरे यानी आकांक्षा शर्मा और मेरी

0: वो होस्ट नंदिता भट्ट के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। दोस्तों, जब भी हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारे मन में साहस, अनुशासन और सीमाओं में तैनात वीरों की तस्वीर उभरती है।
0: लेकिन आज की सेना सिर्फ पुरुषों के शौर्य तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी राष्ट्रीय रक्षक बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास रच रही हैं।
1: जी हाँ, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी भारतीय सेना में महिलाओं के बढ़ते कदम और उनके अदम्य साहस के बारे में।
0: दोस्तों, एक दौर था जब महिलाओं को सेना में सिर्फ मेडिकल कोर तक के लिए सीमित समझा जाता था, लेकिन आज वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, कमान संभाल रही हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और ये बदलाव रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष, कभी न हार मानने वाला जज्बा और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून, जो उन्हें हर मुश्किलों को पार करने की शक्ति देता है।
0: जी हाँ दोस्तों, और इसी कड़ी में भारत की 14 बेटियां इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में अधिकारी बनी हैं। देहरादून और हैदराबाद में आयोजित एनडीए पासिंग आउट परेड में कुल 746 कैडेट्स को कमीशन मिला है।
1: जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं की एनडीए में एंट्री शुरू हुई थी। ये फैसला देश की हर उस बेटी के सपनों को पंख देने वाली उड़ान है जो अपनी आंखों में वतन की हिफाजत करने का ख्वाब देखती है।
0: दोस्तों, भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि नया भारत अपनी बेटियों की शक्ति को पहचान रहा है और उन्हें आसमान छूने के मौके भी दे रहा है।
1: बिल्कुल, आज की नारी कमांडर भी है, फाइटर पायलट भी है और देश की ढाल भी है। हमारी ओर से सभी नवनियुक्त अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: दोस्तों, हमारे इंफोटेनमेंट का सफर यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले सुनिए ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुंजन सक्सेना से और जिसे आवाज दी है ज्योति नूरान ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेक कार्य की जो किसी को नया जीवन दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्तदान की।
2: बिल्कुल नंदिता, कहते हैं दोस्तों कि रक्तदान यानी कि महादान, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है।
1: सड़क दुर्घटनाएं हो, बड़े ऑपरेशन हो या फिर कैंसर के मरीज हो, इन सभी परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, एक यूनिट रक्त से 3 लोगों तक की मदद की जा सकती है, क्योंकि रक्त के अलग अलग घटक जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल अलग अलग मरीजों के काम आते हैं।
1: लेकिन आज भी कई लोग रक्तदान के को लेकर भ्रम में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है,
2: जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सच तो यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा भी कर लेता है और डॉक्टर्स की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षित होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 18 से 65 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्ति जिनका वजन निर्धारित मानकों के अनुसार हो, वो रक्तदान कर सकते हैं।
2: और हम जैसे युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि युवा नियमित रूप से रक्तदान करने की आदत अपनाएं, तो रक्त की कमी जैसी समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
1: और रक्तदान केवल दूसरों की मदद ही नहीं करता, बल्कि इससे स्वास्थ्य जांच का भी अवसर मिलता है। रक्तदान से पहले आपके रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाती है।
2: दोस्तों सोचिए, आपके कुछ मिनट किसी अनजान व्यक्ति के पूरे जीवन को बचा सकते हैं। इससे बड़ा मानवता का उदाहरण और क्या हो सकता है।
1: जी हाँ, अगर आपके आसपास किसी अस्पताल, ब्लड बैंक या रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, तो उसमें भाग लेने के बारे में जरूर सोचिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए।
2: याद रखिए दोस्तों, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, जरूरत पड़ने पर केवल इंसान ही इंसान के काम आ सकता है।
1: तो आइए आज हम संकल्प लें कि जब भी संभव हो रक्तदान करेंगे और जीवन बचाने के इस अभियान का हिस्सा जरूर बनेंगे।
2: बिल्कुल, चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है संडे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स का, जिसका विषय है युवा रक्तदान के बारे में कितना जागरूक है। चलिए दोस्तों सुनते हैं हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स।
3: हाय।
1: हाय, आपने कहाँ से हमें कॉल किया है?
3: मैंने कोटद्वार से करा है। मेरा नाम सानिया है, मैं कोटद्वार में रहती हूँ।
1: okay.
3: और मैं जॉब भी करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ साथ में।
1: ओके, बहुत अच्छे सानिया। तो हमारा जो आज का हेलो फ्रेंड्स सेगमेंट का विषय है वो रक्तदान से जुड़ा हुआ है, और मैं जानना चाहती हूँ आप एज ए यूथ ब्लड डोनेशन से क्या समझते हैं।
3: इसे मैं एक ये समझती हूँ कि अपनी मर्जी से किसी नीडी को इमरजेंसी के टाइम ब्लड डोनेट करना। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम सिर्फ खून नहीं बल्कि किसी के जीने की उम्मीद और उनकी फैमिली को खुशी दे रहे होते हैं। ठीक है
1: जी,
3: इससे बड़ा ह्यूमन कनेक्शन और कुछ नहीं हो सकता है। आपके एक छोटा सा स्टेप किसी की जान बचा सकता है।
1: बहुत अच्छे, तो आपके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस है या फिर किसी की मदद करने का सबसे बड़ा जरिया है?
3: मेरे लिए ये तो किसी की मदद करने का सबसे बड़ा जरिया है। जब हम किसी की मदद के लिए आगे आते हैं तो वही असली ह्यूमैनिटी है, और आज की जनरेशन को इस नजर से देखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ह्यूमैनिटी से बड़ा और कोई फर्ज नहीं होता है, और हमारी जनरेशन को भी इससे सीख लेनी चाहिए। तो सानिया, आपने अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा गीत आज आप हमारे युवाणी कार्यक्रम में सुनना चाहती हैं?
3: मेरे लिए लगा दो आप सैयारा मूवी का तुम हो तो सॉन्ग।
1: ठीक है, बिल्कुल, हम आपकी इस फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जरूर रखेंगे। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: वेलकम।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: हेलो। कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैं देहरादून से बात कर रही हूँ।
0: ओके, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम भूमि शर्मा है।
0: ओके भूमि, आप क्या करते हैं?
1: मैं अभी तो कॉलेज में हूँ। मैं अभी एक कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ अपना, बीकॉम ऑनर्स।
0: ओके, बहुत अच्छी। भूमि, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।

0: कि आप ब्लड डोनेशन को लेकर कितने अवेयर हैं?
1: अगर मैं अपना बताऊं तो मैं और मेरे फ्रेंड्स की बात करूं तो पहले से ना हम लोग हमें इतना नहीं पता था ब्लड डोनेशन के बारे में, हम लोग इतना अवेयर नहीं थे, बल्कि हमें डर ही लगता था कि ऐसे कैसे ब्लड डोनेट करना है एंड ऑल। लेकिन एक दिन हमारे कॉलेज में इसके रिलेटेड कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था और वहाँ काफी सारे प्रोफेशनल लोगों ने हमें ना बताया कि कैसे डोनेट करना है ब्लड, कितना एज है एलिजिबल डोनेट करने के लिए और कितना हीमोग्लोबिन होना जरूरी है, और ये सब ना मेडिकल कंडीशन उन्होंने हमें अच्छे से एक्सप्लेन करी है।
0: ठीक है.
1: तो इस वजह से हम काफी वेल अवेयर हो गए इस बारे में, और हमें ये भी पता चला कि एक हेल्दी बॉडी मतलब कैसे डोनेट कर सकती है ब्लड। इससे हमारे दिमाग में जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे, एंड नेक्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में जब ब्लड कैंप लगा तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स सबने ब्लड डोनेट करा उस कैंप में।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने पॉजिटिवली आगे आकर इस ओर अपना कदम बढ़ाया है. अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए भूमि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा गीत आज आप हमारे युववाणी कार्यक्रम में सुनना चाहती हैं?
1: आप ये जवानी है दीवानी का सुभान अल्लाह सॉन्ग प्ले कर सकते हो।
0: बिल्कुल, आपकी इस फरमाइश को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर रखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया भूमि हमारे साथ जुड़ने के लिए.
1: थैंक यू।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हाय,
0: हाय। आपने कहाँ से हमें कॉल किया है?
1: मैं गुजरात से आपको कॉल कर रही हूँ।
0: ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है?
1: मेरा नाम एकता है और
0: ओके,
1: मैं भी गुजरात में मास्टर्स कर रही हूँ।
0: बहुत अच्छे एकता। तो हमारा आज का हेलो फ्रेंड्स सेगमेंट का जो विषय है वो ब्लड डोनेशन के बारे में है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहली बार ब्लड डोनेशन का ख्याल आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है?
1: मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक प्राउड फीलिंग आती है। जब भी मैं रक्तदान के बारे में सोचती हूँ तो दिमाग में ये बात आती है कि मेरा थोड़ा सा वक्त और मेरा ब्लड किसी क्रिटिकल पेशेंट की जान बचा सकता है।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है?
1: नहीं, मैंने तो कभी ब्लड डोनेट नहीं किया, पर मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली में काफी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। मैंने उनको ही ब्लड डोनेट करते हुए देखा है। जैसे मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि
0: बिल्कुल।
1: हमारे पड़ोस में ही एक भैया रहते हैं, वो बहुत ही इंथुजियास्टिकली मतलब ब्लड डोनेट करते हैं। हर साल में कम से कम 2 बार वो ब्लड जरूर डोनेट करते हैं। अगर कोई पेशेंट को जरूरत होती है तो उनको भी डोनेट करते हैं, और अगर किसी पेशेंट को नहीं तो वो जा करके ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करते हैं। तो उन्होंने हमारी फैमिली में, जब हमारी फैमिली

0: में हमारे किसी को जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहुत बारी हमारी फैमिली मेंबर्स को भी ब्लड डोनेट कर रखा है। तो मुझे इससे ये ध्यान आता है कि जरूरी नहीं है कि मुसीबत के समय आपके खून के रिश्ते ही आपके खून के लिए काम आए, आपके ऐसे रिश्ते भी आपके लिए काम आ सकते हैं जो ऐसे लोग होते हैं समाज में जो लोगों की भलाई के लिए जो ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब वो किसी कॉज के लिए या अपने मतलब के लिए वो सब नहीं कर रहे, वो जस्ट एक अच्छाई है जो वो समाज में बांट रहे हैं।
1: बहुत गहरी आपने बात कही है कि सेल्फलेसली जो मदद करने के लिए सामने आता है, उससे बड़ा इंसान, उससे बड़ा दिल किसी का भी नहीं होता है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया है आपके पड़ोस वाले भैया ने। अपना एक्सपीरियंस एकता हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा गीत आज आप हमारे युवाणी कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं?
0: मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का गाना सुनना चाहूंगी।
1: बिल्कुल, आपकी इस फरमाइश को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर रखेंगे। अपना समय निकालकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा संडे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसका विषय था युवा रक्तदान के बारे में कितना जागरूक हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्ध

0: असमान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें pis.gov.in पर।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की, और साथ ही जानेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने कितने समय तक देश का नेतृत्व किया।
3: बिल्कुल नंदिता, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया है और हर एक ने अपने समय में देश के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग 17 वर्षों तक देश की सेवा की। ये अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है।
3: इसके बाद कई प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग अवधियों में देश का नेतृत्व किया। इनमें लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अन्य नाम शामिल हैं।
2: दोस्तों, अगर हम लगातार और लंबे कार्यकाल की बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रमुखता से सामने आता है। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और लगातार तीसरे कार्यकाल में वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ श्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुल कार्यकाल को भी पीछे छोड़ दिया है।
2: ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का लगातार विश्वास किसी भी नेता के लिए बड़ी बात मानी जाती है।
3: साथ ही ये हमें भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का भी एहसास कराती है, जहां जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और देश की दिशा तय करती है।
2: दोस्तों, प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल केवल वर्षों की संख्या नहीं होती, बल्कि ये उन नीतियों, निर्णयों और विकास कार्यों का भी प्रतिबिंब होता है जो देश के भविष्य को आकार देते हैं।
3: और युवाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लोकतंत्र की यात्रा किन नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। इससे हमारी राजनीतिक समझ और जागरूकता दोनों बढ़ती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनाते हैं आपको ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से और जिसे आवाज दी है विशाल ददलानी और हंसिका ने।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना खोलती है। बीते हुए कल को मुस्कुराकर विदा कीजिए और आने वाले कल का उम्मीद से स्वागत कीजिए। यही उम्मीद, यही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
3: दोस्तों, इसी थॉट के साथ हम जानते हैं कि आज हमने हमारे कार्यक्रम में किस किस बातों पर चर्चा की। सबसे पहले दोस्तों, हमने जाना कि भारतीय सेना में महिलाओं का रोल किस तरीके से है, किस तरीके से हमारे देश की सारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। साथ ही दोस्तों, हमने जाना कि रक्तदान के महत्व क्या है, क्यों रक्तदान करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही हमने जाना कि भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कितने लंबे समय से चला आ रहा है। और साथ ही हमने आज हमारे कार्यक्रम में शामिल किया था हमारा हेलो फ्रेंड सेगमेंट, जिसका विषय था कितना जागरूक है युवा रक्तदान के बारे में। दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का,
2: मगर जाने से पहले दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा। हम कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून।
3: इसके साथ ही दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी एकांश और नंदिता को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ग्राम जगत सुनने वाला सभी सुनने थे सरिता भट्ट की छोट बटे नमस्कार सेवा सौली अड्डा
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम ग्राम जगत सुंदरा हमारा सभी श्रोताओं को रमन रावत को नमस्कार और सेवा सौली दगड़ा ही मेरी दगड़िया सरिता को भी मेरे नमस्कार
0: सेवा सौली
1: सेवा सौली बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज एतवार ची और आज हुंदू हमारो खास कार्यक्रम श्रोताओं का अनुरोध मा यानी कि आप लोगों का अनुरोध का गीत। तो सरासर चिट्ठी भेजा के लेके कार्यक्रम हम शुरू करे ली। अब जब आप लोगों की चिट्ठी आली तभी ये कार्यक्रम मा बनी बनी का रंग भुरेला है ना,
0: चाहे वो कुमाऊं के हो, चाहे वो जौनसार के हो, चाहे गढ़वाल के हो, जगह चाहे कोई भी हो, बात एक ही च, भाव एक ही च। और वहां खुणे के कन कि भाई चिट्ठी भेजण और चिट्ठी भेजण अपड़ जो गीतांग छिन ऊक नौ और ऊक गीता का बोल अपड़ अता पता
1: अपड़ नौ भी लिखण
0: अपड़ नौ भी
1: और पता भी लिखण के लिए कि यहाँ से ही हम तय पता चल दू कि हमारा जो सुनदरा छन ये कार्यक्रम का माध्यम से कक कक बेटी की हम दगड़ी जुड़िया छन। तो दगड़िया धैर्य हमन लगाए ली जबर तक हमारा सुनदरा चिट्ठी भेज दन तबर तक किले ना हम अपनी पसंद को गीत सुने की ये कार्यक्रम तय शुरू करा।
0: पर पहले एक दो चिट्ठी को पता बता दे हमारे झटपट आंगुल चिट्ठी को पता छा चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। तो जब अर्थ आप लोग हमको चिट्ठी भेज दें तब अर्थ सुनना हम मनमोहन बदाणी का स्वर मा ये सुंदर से गढ़वाली गीत।

0: अभी आप सुना चा मनमोहन बदाणी का स्वरमा यू सुंदर सी गढ़वली गीत। अरे रमन जी
1: अब कुछ रह बार सुना देना।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: हेलो
7: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
6: फिर से
7: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
8: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
8: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
7: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: सर 2 लाख
9: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
7: अरे
6: काट दिया।
9: पैनिक मत कीजिए पापा।

0: फुल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी सुने ना मुल कुछ रविवार और मैं बोलूं कि रमन जी देखते झोलों कुछ ऐच कि नहीं है, धात लगा ली।
5: बिल्कुल बिल्कुल, ये चिट्ठिया च विजय पार्क देहरादून बिटी की मनोरमा रावत जी की।
4: अच्छा।
5: और बुनीछन की सिमनिया ग्राम जगत कुटुम्बदरी हमारी तरफा बिटी भी नमस्कार च। अनिशा गुसाई को गयू कोई भी गीत सुनाई दिया बोला जुगराज रहा सदन ही।
4: मनोरमा दीदी हमारे बहुत पुराना श्रोता छी और हमेशा चिट्ठी लिख दिन, चाहे कोई कार्यक्रम भी हो, चाहे आपक अनुरोध में हो, चाहे चिट्ठी पत्री हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जनों वास्ता वहाँ में वो चिट्ठी भेजना रहें हमेशा अपू मार्गदर्शन हम ते देना रहें। तो दीदी आप बिर हम सभी सुन दिया अनिशा गुसाई का स्वर में सुंदर सी गड़ोली गीत।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: The all-new Nissan Revive अब CNG में
2: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेवाइड CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
1: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
3: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
4: जिंदगी अनमोल है दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं ओवर स्पीड गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन
5: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी
6: रेबारों से पहले आप सुनना छा अनिशा गुसाई का स्वर मा यू सुंदर सी गढ़वाली गीत
7: दगड़ा है कि चिट्ठियां ही डिफेंस कॉलोनी देहरादून बिटी की वीके सिंह जी की और यू हमारा नियमित श्रोता भी छन अच्छा। और सीनियर सिटीजन भी छन
6: है ना
7: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपन चिट्ठी लिखी और यू सुनने चाहना छन रेखा उनियाल को गयु कोई भी गीत
6: अच्छा
7: है ना
6: तो वीके सिंह जी आप भी हम भी सब सुन लिया रेखा उनियाल का स्वर मा यू सुंदर सी गढ़वाली गीत

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: रविवारों से पहले आप सुनना चाह रेखा उनियाल का स्वरमा सुंदर सी गढ़वली गीत। अरे रमन जी, झोला खंकोड़े देखो छछा कि नहीं?
4: ना ना ना, वो तो बाद में देख ला।
3: अच्छा,
4: तो पहले अपनी छुई बंद करा। आज कुछ विशेष छे ना?
3: हाँ, विशेष तो छे छे। आज विश्व रक्तदान रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस छे तो बात भी खास छे कि लेके भाई हमार जो शरीर छे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छे रक्त, खून,
4: लुए,
3: लुए, लुए, अगर लुए है तो सब कुछ, नीच तो कुछ भी नहीं।
4: पर मुश्किल यह होंगी ना दगड़ियों कि अभी तक भी बहुत जागरूकता कार्यक्रम चलना छ, और विश्व रक्तदाता दिवस की अगर हम बात करना छा तो ये दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही कि लोग रक्तदान का प्रति जागरूक हों,
3: जागरूक
4: है ना। लेकिन आप देखा बहुत सारी जागरूकता होगी लेकिन अभी भी इतना जागरूक नहीं छन लोग, है ना। भ्रम च चाहे डॉर च जो भी बोला आप, पर उदगा लोग अभी जागरूक नहीं छन कि रक्तदान किले जरूरी च। हम सब भी जनदा कि आज तक चाहे मनुष्य और विज्ञानन कद का ही उन्नति करेली, पर अजू तक कहीं भी फैक्ट्री मा लुए नहीं
3: लुए नहीं बन,
4: है ना। तो यानी कि अगर लुए की जरूरत का कि पुण्य च तो वो मनखी से ही पूरी हो सके।
3: मन क्यों कुछ तो मन क्यों सही होली,
4: है ना। लेकिन अभी भी निकलना छन लोग, अगर आप देख दछा कि रोज कद का ही एक्सीडेंट होंदन, है ना। कद का ही इधर रोगी भी छन, मरीज भी छन जो होते कि बार बार लुए की जरूरत पड़ दी,
3: पर सब महिला,
4: है ना। तो बहुत सारी इन केस हुंदन की जामा जरूरत पड़ दी, और कई बार हुंदू की जो हम बोलते हैं कि ब्लड बैंक वामा हुंदु नहीं ब्लड, है ना। तो बहुत मुश्किल वे जान दी। तो लोग ये का प्रति जागरूक हों इले ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाई जान।
3: और रमन जी, डॉक्टर भी बोल दिन, चिकित्सक भी बोल दिन की रक्तदान करण चाहिए,
4: बिल्कुल,
3: है ना। शरीर में बल रक्तदान समय का अनुसार जब जब वो होलो तो रक्तदान करना चाहिए।
4: 3 महीना मा अगर हम रक्तदान कर दा तो हमारा शरीर मा कोई कमजोरी भी नहीं आंदी, पर हमारो शरीर भी नयू बन दू, किले की नयू खून हमारा शरीर में फिर से बन दू, है ना। तो हमारी भी छोटी मोटी जो तकलीफ हुंदन, छोटी मोटी बीमारी जो हुंदन वो ठीक वे सकदन, और हमारा एक यूनिट ब्लड से कम 3 लोगों की जान बच सकती।
3: और रक्तदान से पहले जांच भी होंद तो फायदा नहीं चाहिए,
4: बिल्कुल चे।
3: और बोल देने पुण्य को काम भी चाहिए कि रक्तदान महादान
4: है ना। तो इलाही हमारी भी आप लोगों से प्रार्थना च कि जख्म भी कहते हैं जरूरत पड़ दी तो आप अपना मन की डर झिझकते हैं दूर करी कि रक्तदान जरूर करा। और आज हम देखना चाह कि बहुत सारा ना इना भी गुरु बनिया छन लोगों का जो जरूरत पड़ने पर तुरंत जय की मदद कर दें, इना भी छन लोग, है ना। तो हमते भी उही श्रेणी में शामिल होन पड़लू कि ले कि अगर हमते मानवता बचान अपना जन लुख होते हैं बचान च तो थोड़ा तो सोचन पड़ा लू कि हमारे
3: शुरुआत भी कन करने
4: पड़ा ली, है ना। तो बहुत जरूरी चे कि हम रक्तदान करा, और ये दिवस ते मनाने को उद्देश्य हम बार बार बुना छा कि यू च।
3: तो दगड़िया क्या चब?
4: हाँ बिल्कुल, चिट्ठी भी चे। और मैं सोचूंगा छो कि जो चिट्ठी भेजी ना वो सोचना रे ओला की होंगी तो छुई बत्ती लगे नहीं, अब चिट्ठी कन के पढ़ लाई।
3: अच्छा,
4: तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, अगली चिट्ठी में पढ़ू छो। और यह चिट्ठिया ही चे ललित बिजलवाण जी की सर्किट हाउस पौड़ी बिटी की।
3: अच्छा,
4: है ना। और ये वो नाचन की अनिल बिष्ट दगड़े होंगे गयी बोलो कोई अच्छू सी गीत सुना।
3: तो बिल्कुल जी, आप भी हम सभी भी सुन लिया ये सुंदर सी गीत।

0: अभी आप सुनना चाह अनिल बिष्ट और दगड़ियों का स्वर मायू सुंदर सी गढ़वाली गीत रमन जी।
1: दगड़िया है कि चिट्ठियाई च पुल्ड हाउस पौड़ी बिटी की रश्मि रावत की।
0: अच्छा,
1: और ये वो नीचे ने कि युगम्बर पोलियो दगड़ियों को गई पर कोई सुंदर सी गीत सुने दिया। हाँ, यू अच्छो करी की सबो नाचन की कोई भी सुने दिया,
0: कोई भी सुने दिया ना हम तो कम होएगा मतलब। हाँ, कि हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो मिलो वो सुने दिया
1: बिल्कुल।
0: तो रश्मि रावत जी आप भी हम सभी सुन दिया युगम्बर पोली का स्वर मायू सुंदर सी गढ़वाली गीत।

0: दगड़ियों अभी आप सुनना चाहिए युगम्बर पोली और दगड़ियों का स्वर मयू सुंदर सी गढ़वली गीत और जन की आप सभी जन छो कि अब भगत हूँ वोच हिंदी में हमारा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को तो घड़ेक में ही सुन दिया समाचार
1: कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादू रुको लिंक में क्लिक मत करना
2: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
2: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर
6: हर घर सूर्य घर
7: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के जिंदगी में आता है लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है महात्मा गांधी सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो परिश्रमी बनो और साहसी बनो स्वामी विवेकानंद जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ स्वामी विवेकानंद
8: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में बुक्सा जनजाति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया और बागेश्वर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने

0: 2006 में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा प्रवास के दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में ये बात कही। श्री धामी ने कहा कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को नई दिशा देने का कार्य किया है।
1: देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इसी संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के स्नान घाटों की स्वच्छता और संरक्षण के लिए व्यापक कार्ययोजना का काम किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु मां गंगा और यमुना में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा स्वरूप साड़ियां और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, जिससे घाटों और नदी तटों पर कचरे का दबाव बढ़ जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के माध्यम से एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत चार विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और दोनों धामों में स्वच्छता, संरक्षण तथा पुनर्चक्रण के कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि परियोजना को प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
2: यमुना दोनों नदियों का जो हमारा एक्वा कल्चर है, प्लस जो वहाँ का मरीन इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करेंगे, वो एक हिस्सा है। नंबर दो, जो ये सामग्री लोग डालते हैं इसको ट्रीटमेंट के बाद उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। दो, नंबर तीन, जो ये साड़ियाँ इकट्ठा होंगी या सामग्री इकट्ठा होगी उसको किसी ना किसी रूप में रिपर्पस करेंगे, चाहे बैग बनाए, चाहे पायदान बनाए, चाहे कोई चीज़ सामग्री बनाए, थैले बनाए, ये तीन। और चौथा है फॉरेस्ट के साथ, उनका कंपोनेंट है फॉरेस्ट, क्योंकि वो नदियाँ ऑब्वियसली उनका एक्ट के अनुसार फॉरेस्ट का एक मैंडेट है जिसमें वो प्रोटेक्शन के काम करते हैं, तो वो एक प्रोटेक्शन वाला कंपोनेंट उनका है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर के सावलदिक क्षेत्र में बुक्सा जनजाति की महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र जनजातीय मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के तहत बुक्सा जनजाति की महिलाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं उत्पादन गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर के विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया। विभागीय अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दी। विधायक पार्वती दास ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां लोगों को योजनाओं से जोड़ने और सरकारी प्रयासों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने, उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा, जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से, आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
0: समूह संचालक लीला आर्य ने कहा कि इस अचीवमेंट एग्जीबिशन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है।
5: सबसे पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को यहाँ तक बढ़ाने में उन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सरकार का और राज्य सरकार, केंद्र सरकार। मतलब हम आज तक बाहर ही नहीं निकलते थे, जैसे मैंने धीरे धीरे समूह से जुड़ी, मैं एक छोटे से समूह में जुड़ी, उसके बाद धीरे धीरे हमारा एक वो बना, ग्राम संगठन बना, ग्राम संगठन बन के हमारा एक क्लस्टर बना, उसमें कुछ नहीं भी है तो आज हम 100 से ज्यादा महिलाएं वर्क कर रही है।
0: पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौरगढ़ किले में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से किले परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में व्यापक साफ सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने, क्षतिग्रस्त टोंटियों एवं जलापूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक जन सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किले में आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में बुक्सा जनजाति की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया और बागेश्वर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: दगड़ियों एकदम फिर से स्वागत है आपो को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसरी पाली माँ और मिछो आपक दगड़ी सरिता भट्ट
11: और मिछो रमन रावत।
10: रमन जी
11: चिट्ठी
10: दगड़े चिट्ठी
11: चिट्ठी पढ़ने पड़े ली सरासर
10: आई ची तो पढ़ने पड़े ली।
11: हाँ बिल्कुल,
10: चिट्ठी आई च नथु वाला बटेगी लिखण वाला छिन पल्लवी पंत, वेदांश पंत, सानवी पंत और लिखना छिन की कुमाऊनी गीत सुना दिया बल तारा जोशी और प्रीति अग्रवाल का स्वरमा।
11: अच्छा,
10: आवा सुनिया आप भी और पंत परिवार भी और हम भी ये सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: अभी आप सुनना चाह तारा जोशी और प्रीति अग्रवाल का स्वरमयी सुंदर सी कुमाऊनी गीत दगड़िया
1: दगड़िया है कि चिट्ठियाँ च आयुषी भट्ट की नथवा वाला बिटी की और ये वो नाचन की प्रमिला को गयूं ज्ञान सु लग्या जो गीत च गड़ोई गीत वो सुनाया दिया वल तो हम देर नहीं कर दा कि लेके फिर समय भेजान है ना तो सरासर सुना दा ये सुंदर सी गड़ोई गीत।

0: अभी आप सुनना चाह परमिला का स्वर मायू सुंदर सी गढ़वाल दी गीत।
1: और ये गीत का दगड़ा ही आज का कार्यक्रम ग्राम जगत है। यख्मी बटोल ने रमन रावत और
0: सरिता भट्ट दिया
1: आज्ञा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:50 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून भटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में दीपक नेगी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण को नए युग में प्रवेश करयाली। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्ध प्रदर्शनी को आयोजन करे गए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जोखली का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी और हरिद्वार में बोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन तैयारियां पूरी करया ली। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण का नए युग में प्रवेश कर चुकी। मुख्यमंत्री

0: द्वार कार्यक्रम ई संकल्पते मजबूत कनकु माध्यम च। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों को निरीक्षण करी और ग्रामोत्थान परियोजनाओं का अंतर्गत सद्भावना सीएलएफ द्वारा संचालित दीदी कैफे को शुभारंभ करी। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी को आयोजन करे गए। प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों ते प्रदर्शित करे गए। विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों को माध्यम से लोगों ते योजनाओं की जानकारी दिए गए और लाभार्थियों ते मिलने वाली सुविधाओं ते अवगत कराए गए। विभागीय अधिकारियों लोगों ते योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रतिक्रिया और मिलने वाली लाभों की जानकारी भी दी। विधायक पार्वती दर्शन बोली कि ये प्रकार की प्रदर्शनियां लोगों ते योजनाओं से जुड़ने पर और सरकारी प्रयासों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदी।
1: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने, उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
0: नैनीताल का जिलाधिकारी ललित मोहन रयालन भोल आयोजित होने वाली श्री कैंची धाम मेला के मद्देनजर भीमताल और बेताल घाट विकास खंड अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित करा ली, जबकि इन विकास खंडों के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाज को सामान्य रूप से खुला रहा। विश्व रक्तदाता दिवस का अवसर पर गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी का संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर को आयोजन करेंगे। रक्तदान महादान कार्यक्रम का तहत आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान करी। ये अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा चमोली का चेयरमैन ओम प्रकाश डोबालन बोली कि समाज सेवक अनेक माध्यम छन, लेकिन कई कुछ जीवन बचोड़ में रक्तदान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण छ।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जखोली विकास खंड का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में हाल ही में हुए अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी। उन आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करी, उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता करने को आश्वासन दिनी। मंत्री ने अधिकारियों ते निर्देशित दे कि प्रभावित परिवारों ते तत्काल राहत उपलब्ध करे जो और नुकसान को शीघ्र आकलन करी नियमानुसार मुआवजा और अन्य सहायता प्रदान करे जो। कैबिनेट मंत्री ने बोली कि मानसून सत्र शुरू होने वाले छन, यहाँ का वास्ता विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रखें। उन राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाओं, जेसीबी मशीन और रेस्क्यू टीमों ते अलर्ट मोड में रहने का निर्देश भी दिने। हरिद्वार में भोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी करा ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरन बताई कि सोमवती अमावस्या को लेकर आने वाला तीर्थ यात्रियों ते कई भी की असुविधाएं ना हो, यहाँ का वास्ता यातायात प्लान बनेंगे। दगड़ा ही पार्किंग स्थलों को भी आरक्षित कर्याचन
3: स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और इसमें हमारे SSB पैरामिलिट्री फोर्स साथ में SDRF, NDRF, BDS स्क्वाड, ATS और विभिन्न यूनिट जो हैं वो इसमें जो हैं हमारी लगी हुई है और पूरी तरह इस गेयर में।
0: मनसा देवी ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी ने बताई कि मनसा देवी पैदल मार्ग को भी खोलने का आग्रह करी चु ताकि भीड़ को दबाव ते अलग अलग भागों में बांटे जा सकू।
4: सोमावती अमावस आने वाली और सोमावती में समझता हूँ हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ DM साहब ने कहा है जिस समय यहाँ भीड़ होता नीचे से रोपवे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, एक ही रास्ता अपने पैदल।

0: रास्ता देखा होगा और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए, वो भी खुल जाए।
1: बीमार पशुओं तक अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक एवं पशुपालक का घर द्वार तक पहुंची की उपचार उपलब्ध कराना छन। 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिला में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनी की उभरी च। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सरमन बताई कि 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा को उद्देश्य पशुपालकों तक त्वरित सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना च।
2: एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारंभ जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल हमें प्राप्त हो चुकी है। ये कॉल जो प्राप्त होती है ये पशुपालन विभाग के 19 बास टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती है, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते।
1: आखिरी माह मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंह धामिन बोली चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याण को नए युग में प्रवेश करयाली। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में बागेश्वर का विकास भवन में उपलब्ध प्रदर्शनी को आयोजन करेंगे। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग का जोखली का खलियाणा बांगड़ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान को स्थलीय निरीक्षण करी और हरिद्वार में भोल होने वाली सोमवती अमावस्या स्नान ते लेकी प्रशासन तैयारी पूरी करयाली। यहाँ का दगड़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवा समाप्त हुए। नमस्कार।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त, आपका भैया विकास चमोली। और साथियों आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधा हम देखें तो मानव जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, क्योंकि आज है 14 जून और आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी साथियों यही है कि लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना है और जो नियमित रक्तदान कर रहे हैं उनके प्रति साथियों सम्मान व्यक्त करने के लिए आज हम इस दिवस को मनाते हैं। साथियों रक्त एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसको हम किसी भी कारखाने में नहीं बना सकते। इसका अगर हम एकमात्र स्रोत की बात करें तो वो है स्वस्थ मनुष्य। आप सभी जानते हैं कि हर साल हम देखें तो कितनी ही सड़क दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घायल व्यक्ति को ब्लड लॉस हो जाता है। शल्य चिकित्सा में साथियों हम देखते हैं कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जो

धोती महिलाएं हैं, उनके लिए भी कई बार साथियों रक्त की आवश्यकता पड़ती है। थैलीसीमिया रोग की हम बात करें, गंभीर जैसी बीमारियां, कैंसर है और भी तरह तरह की बीमारियां हैं साथियों, इसके लिए मरीज को साथियों लगातार रक्त की आवश्यकता होती है। और ऐसे में साथियों अगर हम रक्तदान के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इन लोगों का जीवन कैसे बचाया जाएगा? और कहीं ना कहीं एक छोटा सा दान साथियों हमारे लिए किसी व्यक्ति के लिए जीवन का वरदान बन सकता है। तो आप सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बढ़ चढ़ कर साथियों हम भी रक्तदान में हिस्सा लें, रक्तदान करें, और इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और किसी को हम एक नया जीवन भी देंगे। तो चलिए साथियों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी हम करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं रागनी।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
5: एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथियों, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी के माध्यम से हम अपने तमाम किसान साथियों तक कृषि, खेतीबाड़ी, पशुपालन और तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाते रहें, ऐसा हम प्रयास करते हैं। और आकाशवाणी का भारतीय कृषि के विकास में क्या योगदान है, इस विषय पर आज हम आपके लिए एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत से, और इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये महत्वपूर्ण बातचीत।
6: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड रत्न से सम्मानित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत, आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आकाशवाणी का भारतीय कृषि के विकास में क्या योगदान है के बारे में। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
7: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
6: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
7: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है।
6: जी,
7: आप तो रेडियो के आदमी हैं, आपको पता ही है 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आज़ादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरिएट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी।
6: जी,
7: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
6: जी,
7: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने जो 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए।
6: जी,
7: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई।
6: डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, आज के समय की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी जैसे पारंपरिक मीडिया के जो संसाधन है आज के डिजिटल युग में कितने प्रभावी हैं?
7: जो डिजिटल युग आया इससे मैं ये कहूंगा कि आकाशवाणी के प्रचार प्रसार में इसने भी बड़ा योगदान दिया।
6: जी,
7: क्योंकि जैसे हम अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पे कई ऐसे, आपको पता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, कई घाटियां होती हैं।
6: जी,
7: और कई जगह जो रेडियो बहुत स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, तो इसमें जो आज डिजिटल युग में जो जैसे आपका न्यूज ऑन एयर ऐप जो है
8: जी,
7: उसके थ्रू जब ये आज जो लो पावर ट्रांसमिशन वाले सेंटर भी हैं उनकी भी जो रेडियो है वो पूरे विश्व में सुना जा सकता है
8: जी,
7: तो उससे एक फायदा ये हुआ कि जो अभी तक हम लोग, मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है
8: जी,
7: तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
8: जी,
7: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
8: जी,
7: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
8: जी।
7: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गाँव में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है।
6: जब आप फील्ड्स में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं किसान जो हमारे रेडियो कार्यक्रम

0: है उनसे कितना लाभान्वित हुए या आज के समय में हो रहे हैं।
1: रमेश जी, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, और मेरा जो अनुभव रहा है किसानों के साथ में, तो कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया।
0: जी
1: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो
0: जी
1: ऐसे में जो इसके थ्रू प्रसारण होता है, और जो आपके यहाँ से कृषि से संबंधित मैं समझता हूँ दो प्रसारण कम से कम होते हैं,
0: जी
1: और एक तो आपका किसानवाणी का कार्यक्रम है और दूसरा हम लोगों का संस्थान द्वारा जो कृषि समृद्धि कार्यक्रम है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, प्रायोजित कार्यक्रम है, तो दो कार्यक्रम ये जाते हैं और लोग इसको बड़े चाव से सुनते हैं, उसके फीडबैक भी उनके आते हैं।
0: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी से। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी से प्रसारित हुए हों, दो तो आपने बताए, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है आकाशवाणी के साथ का और किसानों के साथ का, उन कार्यक्रमों के बारे में भी जानना चाहेंगे जिन्होंने किसानों को बहुत लाभान्वित किया हो या कर रहे हो।
1: रमेश जी, इसमें देखिए सबसे जो दो चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक तो जो उसमें एक स्पेशलिस्ट को बुला करके जो समकालीन जानकारी उसमें दी जाती है, जो समसामयिक जो समस्याएं हैं उनकी बारे में जो जानकारी दी जाती है, उससे किसान को बड़ा ही लाभ होता है।
0: जी
1: और इसमें ये किया गया कि ये जो क्षेत्र विशेष के अनुसार कार्यक्रम उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करने का जो फ्रीडम दिया गया, उससे लोगों को बड़ी सुविधा मिली, क्योंकि अपनी अपनी लैंग्वेज में वो सुन सकते थे। अब जैसे ये देख लीजिए कि उसमें अंत में एक मौसम का हाल बताते थे
0: जी
1: कि
0: जी
1: भाई मौसम अगले 24 घंटे में ये रहने वाला है,
0: जी
1: तो इसमें आप ये काम करें, तो ये जो सलाहें उनको मिलती थी वो बड़ी ही जो है उपयोगी हैं।
0: जी
1: और दूसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जो आकाशवाणी के जो रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के बारे की जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है,
0: जी
1: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ।
0: जी जी
1: तो इन दोनों ने कृषि को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: स्थानीय बोली जो है, इस भाषा है, उसका भी
1: जी,
0: अपना अलग महत्व है।
1: अलग महत्व होता है जी।
0: भविष्य में आप आकाशवाणी से किस प्रकार के कार्यक्रमों की अपेक्षा रखते हैं?
1: ये भी बड़ा ही चिंतनीय विषय है और इस पे वास्तव में बहुत ध्यान देने का जरूरत है।
0: जी
1: आज का जमाना जो है ये प्रतिस्पर्धा का है।
0: जी
1: बहुत सारे आप देखेंगे YouTube चैनल लोगों ने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे आप देखेंगे तो कृषि से संबंधित तो उस पर भी आते हैं, और बहुत सारे किसान खुद अपना YouTube चैनल चला रहे हैं।
0: जी
1: तो ऐसे में जो आकाशवाणी का काम है वो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।
0: जी
1: और अगर आप शुरू से देखें और अभी तक देखें तो जो कार्यक्रमों के स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा
0: जी
1: आपको, क्योंकि पहले आपके पास कोई कंपटीशन नहीं था, आज की डेट में आपके पास कंपटीशन है, और अगर आपको आकाशवाणी को रहना है तो उसको अपनी गुणवत्ता कार्यक्रमों की सुधारनी पड़ेगी और उसको इतना रोचक बनाना पड़ेगा कि जो YouTube है वो दृश्य माध्यम है,
0: जी
1: उसमें आदमी देखता भी है
0: साहब
1: सुनने के साथ साथ। और ये आप देखिए ऐसा जुनून होता था रेडियो के कार्यक्रमों का कि लोग फला जो एक उद्घोषक है उसका इंतजार करते थे कि उसका कार्यक्रम है, तो
0: जी
1: उसके अंदर ये कला होती थी कि वो पूरा समा बात करके रखता था, लोग बैठ करके सुनते थे उसको।
0: जी
1: तो वो चीजों को उतनी मेहनत अभी करनी पड़ेगी जो वर्तमान पीढ़ी है, इसको मेहनत करके अपने को उससे बेहतर बनाना पड़ेगा, तो तब जाकर जो चुनौती है उसका सामना ये कर पाएगा, मैं ये सोचता हूँ।
0: डॉक्टर साहब, कृषि वैज्ञानिकों और आकाशवाणी के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं ताकि हमारे जो किसान भाई हैं अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें?
1: रमेश जी, ये हमेशा से आकाशवाणी और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका बहुत ही आपस में समन्वयन बहुत अच्छा रहा है। आगे इसको और सुदृढ़ करने के लिए जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी पे हमें एक तो ध्यान देना पड़ेगा, और जो समसामयिक विषय हैं
0: जी
1: उन पे जो है हमें जोर देना पड़ेगा कि और आज के परिदृश्य में जो किसान की जो नई चुनौतियां हैं उनको कवर करना पड़ेगा, तो तब जा करके जो है इसकी जो सामयिकता है वो बनी रहेगी।
0: कुछ ऐसी बातें जो आकाशवाणी के कृषि में उन्नयन से लेकर जुड़ी हुई और हमारी चर्चा में छूट गई हो।
1: रमेश जी, मुझे लगता है कि शायद हमने ज्यादातर चीजें तो कवर कर दी हैं, और इसमें जो समय समय पे चेंजेस होते रहे, जैसे हम उन्नत कृषि तकनीकों की बात करें तो उसी में आपका कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। और जो समय समय पे जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो सरकारी योजनाएं हैं
0: जी,
1: उनके बारे में, और जो ऋण की सुविधाएं हैं इनके बारे में, जो फसल बीमा है उसके बारे में, जो नई नई योजनाएं आए हैं, एक्चुअली अगर आप अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
0: जी।
1: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
0: जी।
1: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और ये मेरे ख्याल से इसको कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग भी अगर कोई चीज एक बार सुनी तो उसमें थोड़ा सा ग्रहण होता है, बाकी अब छूट जाता है
0: जी।
1: तो ये समय समय अंतराल पे इसको अगर लगातार प्रसारित करें तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा
0: जी। सरकार की जो योजनाएं हैं हमारे किसान भाइयों या अन्य लोगों की बेहतरी के लिए, उनके लाभ के लिए, उनका जो प्रचार प्रसार है आकाशवाणी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा
1: ज्यादा से ज्यादा।
0: डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आकाशवाणी का भारतीय कृषि के विकास में क्या योगदान है इस विषय पर आपने विस्तार से अपने विचार हमारे साथ साझा किए। स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, आकाशवाणी ने लगातार ये प्रयास किया है कि हमारे तमाम किसान साथियों तक खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी जानकारी हैं, नवीन जानकारी, आधुनिक तकनीक, वो हमारे किसानों तक लगातार पहुंचते रहें। और आकाशवाणी का भारतीय कृषि के विकास में योगदान के विषय पर ये महत्वपूर्ण बातचीत अभी आप डॉक्टर लक्ष्मीकांत से रमेश चंद्रा की सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि बातचीत का लाभ हमारे तमाम किसान साथियों को ज़रूर मिलेगा। चलिए साथियों, आप कार्यक्रम में हम करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक गीत।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: Papa,
2: Laiye 3000.
3: Kyun bhai?
1: Meri pocket money.
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: एक बार फिर से स्वागत है साथियों, आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और ये समय है जब हमारे किसान खेत में व्यस्त हैं। जी हाँ, क्योंकि होना भी है और खरीफ का ये समय है, खेतों की तैयारी करनी है, धान की नर्सरी डालनी है, तमाम काम हमारे किसान साथियों के पास हैं। धान की नर्सरी साथियों अगर आप डाल रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनका हम अगर पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी पौध हमें मिलने वाली है, अच्छी फसल हमें मिलने वाली है। जैसे कि साथियों खेत की तैयारी की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि धान की नर्सरी में कई बार खरपतवार उगाते हैं, तो इसके लिए आप पहले एक जुताई कर दें, कुछ दिन आप खेत को खुला छोड़ दें और उसके बाद जब आप खेत तैयार करते हैं, कीचड़ बनाकर उसमें नर्सरी डालते हैं, तो इससे नर्सरी में आपको खरपतवारों की मात्रा कम देखने को मिलेगी। दूसरा साथियों, जो खरपतवार हैं वो मेढ़ों में भी रहते हैं, तो मेढ़ों का प्रबंधन आप अच्छी तरह से कर लें, मेढ़ों की साफ सफाई कर लें, मिट्टी उसमें चढ़ा दें ताकि जो जल है, पानी है, वो भी हमारी खेत में ठहरा रहे। तीसरा साथियों, अगर हम बीज की बात करें तो किस तरह का बीज आप

दे रहे हैं, जैसे कम अवधि में पकने वाली फसल हैं, या मध्यम अवधि की फसल हैं, या जो दीर्घकालीन अवधि वाली फसल हैं आप उनको लगा रहे हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के लिए आपने पौध लगाई है, मैदानी क्षेत्रों के लिए आपने पौध लगाई है, उस हिसाब से साथियों आप पौध का चयन करें। बासमती धान भी हमारे साथी खूब लगाते हैं, तो आप देखें कि आपकी जलवायु के अनुसार कौन सी पौध, कौन सा बीज आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल रहने वाला है। उन प्रजातियों को अगर आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। साथ ही नर्सरी में साथियों हम देखते हैं कि दिन के समय अगर हम पानी लगाते हैं तो इससे गलन की समस्या आ जाती है, जो हमारी पौध है उसमें पीलापन भी देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कुछ समस्या आपको लग रही है तो आप दिन में नर्सरी का पानी खाली कर दीजिए, क्योंकि धूप से वो पानी गर्म हो जाता है। शाम के समय साथियों आप नर्सरी में दोबारा से पानी छोड़ सकते हैं, इससे जो ये पीलेपन की समस्या है इसको भी हम कम कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय साथियों पर्याप्त मात्रा में खाद उर्वरक भी डालने हैं, जैसे गोबर खाद है, अच्छी से सड़ी गली जो खाद है साथियों उसको आप खेत में डालिए। उसके बाद अगर आप नर्सरी डालेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। साथ ही बीजों का शोधन साथियों बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो जैसे हम धान भिगा कर डालते हैं, तो हमें पहले बीजों का शोधन भी कर लेना है। नमक में भी साथियों आप बीजों का शोधन कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है साथियों, इससे आप बीजों को शोधित कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे साथियों अच्छा उत्पादन हमें मिलने वाला है। और इस तरह से ये आधुनिक चीज़ें तो साथियों हमें सीखनी होंगी। कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में हम लगातार रहें, ताकि जो भी नवीन जानकारियां हैं, जैसे भी आधुनिक तरीके से खेती किसानी हो रही है उसकी जानकारी हमें मिलती रहे। तो चलिए साथियों आप कार्यक्रम में, हमारा भी समय हो रहा है आपको यहीं पर अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते हम अपने तमाम किसान साथियों से ज़रूर कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें। आपके पत्रों का साथियों हमें इंतज़ार रहता है, और आप पत्र हमें सीधे jagatkrishi@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। इसी के साथ भैया विकास चमोली को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कुमावनी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास सुशासन और जनकल्याणक नए युग में प्रवेश करिहाली। केंद्र सरकारक 12 साल पूर्णक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गई। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग जखोई का खलियाणा बांगर क्षेत्र में है अतिवृष्टि है नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो और हरिद्वार में भोल होने वाल सोमवती अमावस्या स्थान को लेकर प्रशासनल तैयारी पूरी करिहाली। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशल विकास सुशासन और जनकल्याणक नए युग में प्रवेश करिहाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल खटीमा प्रवासक दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जनक सरकारक मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में यह बात को श्री धामिल को कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकारल गरीब किसान श्रेणिया और जवानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लेवे देश के नई दिशा देना काम करो। मुख्यमंत्री को कि आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि मुफ्त राशन उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जस योजनाओं करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई छू। मुख्यमंत्री को कि प्रदेश सरकार उद्देश्य अंतिम पंक्ति में ठाड़ मैसों तक विकासक लाभ पहुंचोण और जन जनक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम या संकल्प के मजबूत करण माध्यम छिन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के निरीक्षण करो और ग्रामोत्थान परियोजना भितर सद्भावना CLFL संचालित दीदी कैफे शुभारंभ करो। केंद्र सरकारक 12 साल पूर्ण होणक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकारक प्रमुख उपलब्धियों जन कल्याणकारी योजनाओं और अलग अलग विकास कामों के प्रदर्शित करी गए। अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम मैशों के योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों के मिलनवाल सुविधाओं अवगत कराई गई। विभागीय अधिकारियों मैशों के योजनाओं की पात्रता आवेदन प्रक्रिया और मिलनवाल लाभों की जानकारी दी। विधायक पार्वती दासल को कि यह प्रकारक प्रदर्शनियां मैशों के योजनाओं से जोड़नी और सरकारी कोशिशों की जानकारी देने में बहुत जरूरी भूमिका निभुनी।
1: प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने उनके कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो शिविर भी लगे हैं और यहाँ पर महिलाओं द्वारा जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने लखपत दीदी और उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारी महिलाएं हर समूह के द्वारा भी बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं इन समूह के माध्यम से आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं इतने आगे बढ़ रही हैं।
0: नैनीतालक जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल भोल आयोजित होने वाल श्री कैंची धाम म्याल को देखभर भीमताल और बेतालघाल विकास खंड भितर संचालित सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिनक छुट्टी घोषणा करिहाली। जबकि इन विकास खंडों के भीतर स्थित सभी सरकारी कार्यालय कामकाजक लिजी सामान्य रूपल खुली रोल। विश्व रक्तदाता दिवसक मौक में गोपेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविरों का आयोजन करी गई। रक्तदान महादान कार्यक्रम के भीतर आयोजित शिविर में ठुल संख्या में जवानों और स्वयं सेवकों खुशी खुशी भाग लेवे रक्तदान करो। यह मौक में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा चमोई चेयरमैन ओम प्रकाश डोभालल को कि समाज सेवा के बहुत माध्यम छिन लेकिन कैके जीवन बचोण में रक्तदानक भूमिका सबसे जरूरी छू।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयागक जखोई विकास खंडक खलियाणा बांगर क्षेत्र में हाल ही में है अतिवृष्टि है नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता एक आश्वासन दी। मंत्री अधिकारियों के निर्देश दी कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जांचे और नुकसानक जल्दी आकलन कर वे नियमानुसार मुआवजा और सहायता ले दी जाओ। कैबिनेट मंत्री को कि मानसून सत्र शुरू होने वाले सभी विभाग आपदा प्रबंधनक तैयारियां पूरी धरो। उन्होंने राहत सामग्री चिकित्सा सुविधाओं जेसीबी मशीन और रेस्क्यू टीमों के अलर्ट मोड में धरनक निर्देश ले दी। हरिद्वार में भूल होनी वाल सोमवती अमावस्या स्नान के लेबेर प्रशासनक तैयारियां पूरी करिहाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरल बता कि सोमवती अमावस्या में होनी वाल तीर्थ यात्रियों के कैल प्रकार दिक्कत नहीं हो यह एक वास्ता यातायात प्लान करी गई छू। दगड़ ही पार्किंग जागों को ले आरक्षित करिहाली।
3: स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरा है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और इसमें हमारे एसएसबी पैरामिलिट्री फोर्स साथ में एसडीआरएफ एनडीआरएफ बीडीएस स्क्वाड एटीएस और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस घेरा में।

0: मनसा देवी ट्रस्टक अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरील बता कि मनसा देवी पैदल मार्ग के लिए खोलनक आग्रह करी गई छू, जेल भीड़क दबाव के अलग अलग भागों में बांटी जाए।
1: भाव साने वाली और सोमावती में मैं समझता हूँ हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी यात्री यहाँ आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ जाए और यहाँ से वापस सुरक्षित जाए। मैंने यही कहा कि देखिए यहाँ यात्री को हम रुकाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यात्री आए और यहाँ से नीचे जाए। और ये भी हमारे यहाँ डीएम साहब ने कहा है जिस समय यहाँ भीड़ होता नीचे से रोप वे से यात्री नहीं आता है, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारा जाता है। और आपने देखा होगा आजकल हमारा जो सीढ़ी का रास्ता वो बंद है, एक ही रास्ता अपने पैदल रास्ता देखा होगा और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी सीढ़ी का रास्ता भी उसकी मरम्मत हो जाए, वो भी खुल जाए।
0: बीमार डंगरों के अब एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक आप ही पशुपालकों घर द्वार तक पहुंच भीर इलाज उपलब्ध करोड़ीन। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पौड़ी जिला में पशु स्वास्थ्य सेवाओं नई पहचान बणबेर शामिल में आई छू। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सरमाल बता कि 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा का उद्देश्य पशुपालकों के तुरंत सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करूँ छू।
2: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारंभ जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल हमें प्राप्त हो चुकी है। ये कॉल जो प्राप्त होती है ये पशुपालन विभाग के 19 बास टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती है, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशल विकास सुशासन और जन कल्याणकारी नए युग में प्रवेश करिहाली। केंद्र सरकारक 12 साल पूर्व हुणक मौक में बागेश्वरक विकास भवन में उपलब्धि प्रदर्शनी का आयोजन करी गए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयागक जखोली खलियाणा बांगर क्षेत्र में है अतिवृष्टि नुकसानक स्थलीय निरीक्षण करो और हरिद्वार में भोल होने वाल सोमवती अमावस्या स्नान के लेबेर प्रशासनल तैयारी पूरी करिहाली। यकादगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:40 होने को हैं। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान।

0: श्रोताओं, आज हम फिर से आ चुके हैं श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय, जो कि मुखानी चौराहे हल्द्वानी पर स्थित है और शिव मंदिर के बहुत ही निकट है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल नजदीक में हैं, पहुंच सकते हैं। और आज हमारी मुलाकात एक बार फिर से हो रही है नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता जी से। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, कोई भी रोगी या ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सीय सेवा लेना चाहता है आयुर्वेद की, जब वो आपके क्लिनिक पर आता है तो तरह की एक्सपेक्टेशन लेके आए, किस किस तरह के रोगों का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है?
1: नमस्कार। हमारा चिकित्सालय पिछले 13 वर्षों से भारत समेत दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में अपनी चिकित्साएं सेवा प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेशन हेतु बनाए गए आयुर्वेद चिकित्सकों का एक विशेष पैनल है, उसमें मैं और मेरा चिकित्सालय दोनों शामिल हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो महाराष्ट्रीयन आयुर्वेद है, उस पद्धति से रोगियों का इलाज किया जाता है और औषधियों के या दवाओं के साथ साथ हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा भी की जाती है, जो कि रोग को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है। इसके अलावा हमारे चिकित्सालय में रोग अनुसार या व्यक्ति अनुसार या रोगी अनुसार कस्टमाइज प्लान दिया जाता है, जिससे न केवल रोग ठीक होने में मदद मिलती है, उसके साथ साथ रोग का जो रिकरेंस होता है, दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं, उसको भी टाला जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो चिकित्सालय है, उसमें रोगी की चिकित्सा के साथ साथ हम उसके केस डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि हम दुनिया को उनके शब्दों में या आधुनिक विज्ञान को, मॉडर्न साइंस को उनके शब्दों में वो केस हम समझा सके, आयुर्वेद की शक्ति को हम प्रदर्शित कर सकें।
0: राहुल जी, रोगों के हिसाब से आपने बताया कि जो डाइट प्लान है वो बदलता रहता है, वो तो आप जैसे विशेषज्ञ ही किसी रोगी को बता सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम एक स्वस्थ आदमी की बात करें, वो दीर्घायु की अगर कामना करता है, तो सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह की जीवन शैली के हिसाब से भोजन होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, दिनचर्या का भाग जो आयुर्वेद में बताया गया है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसका मैं एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दूंगा। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया था, तो दिनचर्या के जो जो भाग अंग्रेज़ करते थे, वही आजकल भारतीय करते हैं, जिसमें दांत ब्रश करना, नहाना और बाकी चीज़ें। लेकिन जो आयुर्वेद की दिनचर्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप आँख में काजल लगाने की प्रक्रिया थी, नहाने से पहले शरीर में तेल लगाने की प्रक्रिया थी, नाक में तेल डालने की प्रक्रिया थी या सर पे तेल लगाने की प्रक्रिया थी। इन सब चीज़ों से शरीर का बचाव होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है। तो इन सब चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में 3 तरह के आहार बताए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि मितांबू, ऋतांबू और हितांबू। हितांबू मतलब हितकारी आहार हमें लेना चाहिए, मितांबू मतलब भूख से थोड़ा सा कम आहार हमें लेना चाहिए, और ऋतांबू मतलब ऋतु अनुसार आहार। जैसे हम गर्मी में टी शर्ट पहनते हैं और सर्दियों में जैकेट पहनते हैं, उसी तरह सीजन बदलने पे हमारा आहार बदलना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा एक आहार अगर आप साल भर खाते हैं, तो वो बीमारी का कारण ज़रूर बनेगा।
0: राहुल जी, ये बताएं चिकित्सालय में किन-किन रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है?
1: हमारे यहाँ मुख्यतः नेत्र रोग का अच्छा चिकित्सा उपलब्ध है, या नेत्र रोग की हम चिकित्सा करते हैं। इसमें मुख्य जो जो बीमारियाँ हमारे यहाँ देखी जाती है, उसमें यूवेआइटिस है, ब्लेफेरोस्पाज्म है। ब्लेफेरोस्पाज्म मतलब आँखों का फड़कना, यूवेआइटिस मतलब आँखों के सामने फ्लोटस दिखना या आँखों की रोशनी कमजोर होना। विट्रस हिमरेज है, जिसमें आँखों में खून उतर जाता है या ब्लीडिंग होती है, जिससे आँखों की रोशनी चली जाती है। इसके अलावा डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज़ और जो हाई बीपी के पेशेंट रहते हैं, उनकी बीमारी के कारण आँखों पे जो असर आता है, उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। इसके अलावा ग्लॉकोमा या काला मोतिया, उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। इसके साथ साथ जो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट होता है, उसको रोकने तथा उसको रिवर्सल का भी चिकित्सा हमारे चिकित्सालय में दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ किडनी संबंधित रोगों का अच्छा इलाज है। इसमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में हमने बहुत सारे केस प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा उदर विकार में, यानी पेट की बीमारियों में, हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या लिवर सिरोसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन इत्यादि में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही हम बंध्यत्व या इनफर्टिलिटी पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें दरअसल हम जो है कपल्स की काउंसलिंग करते हैं, और कपल्स को हम चांस लेने से पहले गर्भ संस्कार करवाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जो 16 संस्कार बोले गए हैं, उसमें सबसे पहला संस्कार जो है गर्भ संस्कार है, जो कि अभी लुप्त हो चुका है। जिस तरह से विवाह संस्कार आप YouTube या बाकी चीज़ों से ना करके एक पंडित को बुला के फिर वो किया जाता है, वही चीज़ जो है गर्भ संस्कार में भी लागू होती है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार जो लोग नहीं करवाते हैं प्रेगनेंसी के बाद उनके बच्चे अक्सर बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर उन्हें इम्यूनिटी उनकी डाउन रहती है। तो गर्भ संस्कार करके फिर हम दोनों कपल्स का इलाज करते हैं जिससे उनकी प्रेगनेंसी एक तो स्मूथ जाती है और आने वाले बच्चे की हेल्थ में कभी कोई इशू नहीं आता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के रोग हमारे यहाँ देखे जाते हैं और साथ में हम स्पोर्ट्स इंजरी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक घुटने का बड़ा जटिल फ्रैक्चर जिसको शैट्सकस टाइप 2 फ्रैक्चर कहा जाता है उसका इलाज किया जिसकी चिकित्सा मॉडर्न साइंस में केवल सर्जरी थी और वो बहुत ही गंभीर फ्रैक्चर था लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा करके हमने उसको ठीक किया और व्यक्ति अभी पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही उसका भी एक पेपर एक इंटरनेशनल जर्नल में हम प्रकाशित करने वाले हैं।
0: श्रोताओं, आपको बताते चले, अगर आप श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय से चिकित्सीय सेवा लेना चाहते हैं तो आप राहुल जी को 7895372936 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।

अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म दे दे प्यार दे से आप ही गीत सुन रहे थे। आवाज थी गैरी संधू और नेहा कक्कड़ की। गीत और संगीत था तनिष्क बागची का। फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं ये गीत यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है भैया जी सुपरहिट। गीतकार है नीरज पाठक और संगीत है अमजद नदीम का।

फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत सुनिए कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाज में फिल्म धूम से। गीत को बोल दिए हैं समीर ने और सुरों से सजाया है प्रीतम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि। कार्यक्रम में हमारी आज की कवयित्री हैं नवनिधि गुप्ता।
1: अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियों के साथ अपनी कविता को शुरू करना चाहूंगी। तू दे अपने सपनों को उड़ान, तू दे अपने सपनों को उड़ान, ना कर अपना मन अधीर। जग में बनानी होगी तुझे पहचान, ना हो अधीर, तोड़ दे सब जंजीर। अब मेरी कविता का शीर्षक है उड़ान। हे स्त्री खोल दे अपने पंख, हे स्त्री खोल दे अपने पंख, अभी तेरी उड़ान बाकी है, अभी तेरी पहचान बाकी है, अभी तुझे बहुत दूर तक उड़ना है, छूने को आसमान बाकी है, क्योंकि छूने को आसमान बाकी है। तोड़ दे सारी रूढ़ियाँ, तोड़ दे सारी श्रृंखलाएं, इस संसार को बता दे तेरे कितने मुकाम बाकी हैं। हे स्त्री खोल दे अपने पंख, अभी तेरी उड़ान बाकी है, अभी तेरी पहचान बाकी है। कर अपने मन पर तू विश्वास, तोड़ दे सारे बंधन, इस संसार को बता दे तेरा पूरा जहान बाकी है। हे स्त्री खोल दे अपने पंख, अभी तेरी पहचान बाकी है। कर्मठ बन, मंजिल अभी बाकी है, अपने सपनों को दे पंख, उनको सच करना अभी बाकी है। हे स्त्री खोल दे अपने पंख, अभी तेरी उड़ान बाकी है। उत्तरदायित्व निभाते निभाते अपनी पहचान बनाना बाकी है, अपने ऊपर रख विश्वास, छू ले सारी ऊंचाई, क्योंकि सारा जहान बाकी है। हे स्त्री खोल दे अपने पंख, अभी तेरी पहचान बाकी है, अभी तेरी उड़ान बाकी है। मेरी आज की दूसरी कविता का शीर्षक है खुद की पहचान। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। खुद की पहचान। वक्त के पहिए में घूमता सा एक ख्वाब हूँ मैं, वक्त के पहिए में घूमता सा एक ख्वाब हूँ मैं, पढ़ो तो एक अनसुलझी पहेली, ज़्यादा कुछ नहीं बस एक खुली किताब हूँ मैं। माना ज़्यादा कुछ खास नहीं मैं, पर अपनों के लिए बेहिसाब हूँ मैं। उम्मीदों और मुट्ठी भर सपनों को जीती, अपने में ही लाजवाब हूँ मैं। रेत सी फिसलती बीतती हुई जिंदगी के अनसुलझे सवालों का जवाब हूँ मैं। मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, एक दुख भरे बादलों के अश्रों से पूरित बरसात हूँ मैं। मैं किस्सा हूँ या कहूँ जिंदगी की कहानी का पात्र हूँ मैं। मैं हूँ गगन में चमकती बिजली, मैं हूँ गगन में चमकती बिजली, या फिर अंधेरी रात हूँ मैं। मैं समुद्र की लहरों में आती जाती, मैं समुद्र की लहरों में आती जाती, सीपी पर मुस्कुराती एक बूंद मात्र हूँ मैं। मैं हूँ सांसारिक रंगमंच पर कठपुतली सी थिरकती, शब्द विहीन अभिनय मात्र हूँ मैं। मैं हूँ सारांश, मैं हूँ सारांश, मैं नहीं हूँ खास, याद करे या ना करे कोई मुझे आज, पर रखती हूँ अपने पर पूर्ण विश्वास। मैं हूँ संगीत का साज, मन में भरती विश्वास। मैं हवा हूँ, मैं खामोश हूँ, मैं हवा हूँ, अंधकार से लड़कर वह एक दिन सूरज सा चमकता है। उम्मीद और अरमानों की खातिर ओस की बूंदों सा पसीना जब मानव मस्तक पर झलकता है। अपने नित नए सपनों की खातिर तपकर वह, अपने नित नए सपनों की खातिर तपकर वह सोने सा दमकता है। जीवन के रण क्षेत्र में जो विजय को पाता है, जीवन के रण क्षेत्र में जो विजय को पाता है, सही मायनों में वह शूरवीर कहलाता है। बिना रुके जो गिर गिर कर, बिना रुके जो गिर गिर कर उठता और संवरता है, जीवन रूपी समुद्र में वह एक दिन मोती सा चमकता है, मोती सा चमकता है। अरमान और ख्वाहिशों को लेकर जो संघर्षों से लड़ता है, अंधकार भरे दुर्दिनों में वह दीपक बनकर जलता है, अंधकार भरे दुर्दिनों में वह दीपक बनकर जलता है। आए रहा में जितने संकट, आए रहा में जितने संकट वह हंसकर झेल जाता है, हिम्मत और हौसलों की उड़ान भरकर मंजिल तक पहुंच जाता है। हार को हराकर, हार को हराकर जो आगे बढ़ता जाता है, जीवन की हर परिस्थिति में वह एक दिन बाजी मार जाता है। कांटे हो या कलियां हो, कांटे हो या कलियां हो, या प्राणों में जड़ता हो, लक्ष्य को पाने की खातिर जो हर चुनौती को स्वीकार करता है, संघर्षों से लड़कर वो मेहनत से जीवन में इंद्रधनुष सा रंग भरता है, वो जीवन में इंद्रधनुष सा रंग भरता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है टूटा तारा। आसमान से टूटा तारा, तारा टूटा उसका सब छूट गया। आसमान से टूटा तारा, तारा टूटा उसका सब छूट गया। घर बार छूटा, लगता वो रूठा, शायद उससे कोई रूठ गया। आसमान से टूटा तारा, रूठा यदि छूटा यदि, शायद वो अंदर ही अंदर टूट गया। आसमान से टूटा तारा, गांव छूटा, शहर छूटा, अंबर छूटा, प्यारा उसका कोई छूट गया। आसमान से टूटा तारा, आंसुओं का मंजर जैसे फूट गया। आसमान से टूटा तारा, अपना छूटा सपना छूटा, शायद अपना ही कोई उसको लूट गया। आसमान से टूटा तारा, प्यारे छूटे हम सारे छूटे, आंगन के सारे नज़ारे छूटे, पौधों के बीच में सूखा जैसे टूट गया। आसमान से टूटा तारा, प्यारा अपना सपना दफना, न जाने क्यों वह भीड़ में गुम गया। आसमान से टूटा तारा, तारा टूटा उसका सब छूट गया, उसका सब छूट गया। आसमान से टूटा तारा। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यांजलि, और कार्यक्रम में हमारी आज की कवयित्री थी नवनिधि गुप्ता। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। रात के 8:10 हो रहे हैं। अब सुनिए सरकार के 12 सालों पर केंद्रित कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
2: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
2: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया।

0: जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी
1: जी।
0: उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है। और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के, जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे, तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे
1: जी,
0: पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा, जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है
1: जी,
0: बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में, और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के, अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे

0: आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर। हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट, हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शंस बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है। और

0: एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं, बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं और साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, या मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग है, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुन्द्र के पानी के ऊपर, समुन्द्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुन्द्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुन्द्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुन्द्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुन्द्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरी कल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयड नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution? Developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally becoming, developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true because now almost every PIN code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So yes, that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
5: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees, because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow-moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground in terms of teaching, teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we have seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad that government now is looking at Nipun Bharat 2.0, because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
4: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
5: Yes. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the chief minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. And this is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per

0: minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years, so there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government runs National Achievement Survey, or you look at even ASAR, which is a third party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched, and then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launched Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the change is gradual, but we have seen real change on the ground with Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad, you know, if you look at it 6 years ago. World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent, because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed world is in single digits. So India has a long journey. And normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if India had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% of children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it much faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
1: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is a cup half full or half empty?
0: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula and we need the patience. I think with slow moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey, even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. Hmm. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading. Reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
1: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
0: My pleasure. Thank you for having me.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you are listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: यह आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
5: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
4: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
5: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
4: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
6: 140 billion inhabitants.
7: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है।

0: अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
2: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
2: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं।

0: स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की

0: घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में

अर्चना गोरे की आवाज में गीत आप सुन रहे थे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से। गीतकार थे एएम तुर्राज और संगीत था संजय लीला भंसाली का। श्रोताओं, सांवली सी रातों का ना अपना ही एक जादू होता है। ये शोर से नहीं, खामोशियों से बात करती हैं। दिन भर जिन एहसासों को हम अनदेखा कर देते हैं, रात की तन्हाई उन्हें फिर से हमारे सामने ला खड़ा करती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह, कुछ लोग और कुछ रिश्ते और कुछ लम्हे हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये वक्त तो गुजर जाता है, मगर उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं जाता। तो आइए, इस खूबसूरत सांवली सी रात के नाम, उन तमाम ख्वाबों के नाम जो अब भी हमारी आंखों में जिंदा हैं, उन तमाम एहसासों के नाम जो दिल में रहकर भी अल्फाज नहीं बन पाते, और उन लोगों, उन रिश्तों और उन लम्हों के नाम जो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं, पेश है एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म डेढ़ इश्किया से, आवाज़ थी रेखा भारद्वाज की। गीत को बोल दिए थे गुलजार साहब ने और संगीत था विशाल भारद्वाज का। श्रोताओं, सांझ ढले जब मन की देहरी पर यादों के दीप जलने लगते हैं, तब दिल किसी अपने की आहट सुनने को बेचैन हो उठता है। नज़र हर राह पर ठहर जाती है और हमारा जो ये मन है ना, ये मन बार बार बस एक ही बात पुकारता है, और वो क्या है? लीजिए सुनिए इस

0: टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे फिल्म डी डे से। आवाज थी निखिल डिसूजा, सुखविंदर सिंह, श्रुति हसन और लॉय मेंडोसा की। श्रोताओं, इस गीत को बोल दिए थे निरंजनी अयंगर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात के 10 बजने को है। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम जिसे हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
2: हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्री राम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्री राम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर VSP गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
3: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
2: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में MA संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
3: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ही हेल्स फ्रॉम ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली। श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इंटू म्यूजिक बाई हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी। Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
2: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh Valaji Peta Venkatramana Bhagavatar ki ek kriti se kar rahe hain jo raag lalita tatha adi taal mein nibadh hai.
3: Sri J.S. Sriram begins his vocal recital with a composition of Valaji Peta Venkataramana Bhagavatar in the rag Lalita set to Aditala.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू विलोम चापू ताल।

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Shri Yam Chandrakant.
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akash.

0: Ashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
1: अभी आपने सुना रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम को हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident.